हौसले और इरादों की कोई कमी नहीं किसी के पास, हौसले और इरादों की कोई कमी नहीं किसी के पास, पर सफल सिर्फ चंद लोग ही होते हैं। करते हैं जो लगातार प्रयास, इरादे अक्सर उन्हीं के सफल होते हैं। रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम, रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम, सिर्फ हौसले रखने से नहीं मिलते हैं मुकाम। 5:37 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, क्योंकि हर समय बदतमीजी आपकी परवरिश पर सवाल उठाती है। 5:45 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि के तदनुसार 11 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 54 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण का।

6:44 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरित मानस गान। 6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचारों का। ठीक 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर एक बार फिर से होंगे अंग्रेजी में समाचार।

7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 का समय रहेगा आज सवेरे प्रोग्राम का। ठीक 8 बजे होंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुन सकेंगे मॉर्निंग न्यूज। का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। 8:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9 बजे होंगे हिंदी में समाचार। 9:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:59 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

0: संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi Traffic Police has informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. During this period, Sardar Patel Marg, Teen Murti Marg,

बोरकेस वीला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: 6:21 पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। साथियों, जीवन में थोड़ा भी दुख तकलीफ हो तो सबसे पहले जुबान पर माँ का नाम आता है और जगत जननी माँ अम्बे। जब दुर्गा हैं तो हर संकट का नाश करती हैं, जब भवानी हैं तो जीवन में नई ऊर्जा भरती हैं और जगदम्बा रूप में माँ हर भक्त को अपने आंचल की छांव देती हैं। तो आज इस भक्ति की वेला में अपने मन की सारी चिंताएं माँ के चरणों में रख दीजिए और कर्म पथ पर बढ़ते रहिए पूरे विश्वास के साथ। यकीन मानिए, हर मुश्किल आसान हो जाएगी।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

क्योंकि मीरा की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त भगवान को पाने की चाह नहीं रखता, वो तो उन्हें अपने भीतर महसूस करने की इच्छा और अपेक्षा रखता है, जो दरअसल समर्पण का भाव है। तभी तो वो कहती हैं कि चला वाही देश जहाँ मेरे श्याम हैं।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, और जो होगा बेहतरीन होगा। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ती चली और अपनी सारी चिंताएं, सारे कष्ट, सारे संशय ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। मार्ग यकीनन आसान हो जाएगा। 6:35 पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।

0: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और साथियों, अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस की सुंदर संगीतमय पाठ का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ को।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

कहते हैं कि राम तेरे चरणों में सुख अपार है, तेरी भक्ति में जीवन उद्धार है। इसी राम नाम का रस पान किया अभी हमने और आपने रामचरितमानस के इस सुंदर संगीतमय पाठ के जरिए। साथियों, आज जो प्रसंग आपने सुना इसे अयोध्या कांड से लिया गया था और अब वक्त हो रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए क्योंकि कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, क्योंकि अब हम जानेंगे देश और दुनिया का हाल समाचार बुलेटिन के जरिए। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के बाद आपसे एक बार फिर भेंट होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में 7:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विधेः बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शांतिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मंडलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु संवृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्य दक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीय शिखर सम्मेलने ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया भारतम् ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्दुल फतह अल सीसी इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो ईरान

0: देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यसौ अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितम यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुख मार्गेषु यातायाते परिवर्तनम नियंत्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षी बलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रोयान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडा वार्तासु महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रे गतरात्रौ भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजितवे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं 40 धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दंडेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचब से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार

0: जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में एक सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi police has informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. During this period, Sardar Patel Marg, Teen Murti Marg, 30 January Marg, Rajesh Palat Marg, Subramaniam Bharti Marg, Mathura Road, Motilal Nehru Marg, Dr. Zakir Hussain Marg, Africa Avenue Road, Shanti Path, Janpath, Ashoka Road, Barakhamba Road, Niti Marg, Panchshil Marg, Kemal Ataturk Marg, Press Enclave Road and Lala Lajpat Rai Marg along with connecting roads will be affected. Commuters have been advised to use the alternative routes suggested by the Delhi Traffic Police. According to the Delhi Traffic Police, priority will be given to emergency and essential service vehicles. Meanwhile, Delhi Metro has informed that all metro stations will remain open until further notice with regard to multiple queries received on the closure in view of BRICS Summit. In view of the BRICS Summit 2026, Rashtrapati Bhavan Museum and Amrit Udyan will remain closed for the public visit from 11th to 13th of this month. The President's Secretariat said that the change of guard ceremony will also not take place at the forecourt of Rashtrapati Bhavan tomorrow. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family,

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

साथियों, हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। और वैसे एक दिन की शुरुआत करने के लिए आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है, है ना। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर 7:25 हो गए हैं और आप ट्यून इन हैं इस वक्त अपने फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात में मेरे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा के साथ। और आज का मौसम कुछ धूप छाओ के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और हवा की गति रहेगी करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और आज बर्थ एनिवर्सरी है विनोबा भावे जी की और डेथ एनिवर्सरी है सुब्रमण्यम भारती जी की, जिनके बारे में हम बात करेंगे म्यूजिकल दिल्ली में। और आज के प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको मैं बता दूं तो 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल्ली का पहला सेगमेंट जिसमें आपके साथ रहूंगी मैं, और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में रेखा होंगी आपके साथ। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर स्पॉन्सर प्रोग्राम मेरा वजूद, 11:25 पर प्रोग्राम तस्वीर में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में कसोल लेकर चलेंगे, 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर, 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में अभिनेता अभी भट्टाचार्य के बारे में बात करेंगे, और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, 6:30 मार्केट मंत्रा, 8:10 पर मधुरिमा, 10:30 हर सिंगार और 11:40 पर गीत मेरे मन में। तो और फिलहाल एक और गीत आपके लिए और इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलती हूँ आपको 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में। आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। और इस गाने के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे।

0: हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल आवर ग्रेट लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड मुकेश, सिंस यू स्टार्टेड द शो बाय स्पीकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन Andhi and anger, if I may say so. So I'd like to add here that anger is a fire within us. The question is not whether we feel it, but whether we let it destroy us or use this anger to create change.
0: Bilkul.
1: So with this amount of positivity and thought process, let's begin the program Aaj Savere right away.
0: जी हाँ, तो नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली तथा सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे।
1: And adding to the details further, the BRICS Business Forum 2026 will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. The day-long event brings together over 1,000 corporate executives, trade ministers, financial leaders, global investors and industry innovators from member nations. It is being organized by the BRICS Business Council in partnership with leading APEX chambers, FICCI, CII and ASSOCHEM. This flagship international B2B economic summit serves as the official commercial precursor to the 18th BRICS Leaders Summit. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today.

0: Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. Our correspondent brings us more details.
1: BRICS has come a long way from a four-nation grouping to a significantly expanded platform with a wider global footprint. The journey began in 2006 when the BRIC grouping was formalized during a meeting of foreign ministers on the sidelines of the UN General Assembly in New York. The first BRIC summit was held in Yekaterinburg, Russia in June 2009. In 2010, the grouping welcomed South Africa, becoming BRICS. South Africa took part in its first BRIC summit in Sanya, China in April 2011. In January 2020, BRICS entered a new phase of expansion with Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the UAE becoming full members. India assumed the BRICS chairship on the 1st of January this year, taking the lead for the fourth time. India had previously chaired BRICS in 2012, 2016 and 2021. A journey of expansion, a wider global voice and now India at the helm once again. Shagun Chopra for Aaj Savere.
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने बताया कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसके लिए 100% केंद्रीय धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
0: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that under the proposed new Seed Act, farmers' rights are fully protected with no restrictions on traditional and farmers' seed varieties. He said this while chairing a consultation with leaders of farmer organizations on the proposed new Seed Act from across the country in New Delhi yesterday. Mr. Chauhan said that the existing Seed Act was enacted in 1966 and the Seeds Control Order came into force in 1980. He added that the framework is no longer adequate to address emerging challenges such as fake and substandard seeds and gaps in fixing responsibility.
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट के आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी।
0: TRAI has released the standards of quality of service, duration of advertisements in television channels, repealing regulations 2026 yesterday. These repeal the standards of quality of service, duration of advertisements in television channels regulations 2012, dated 14th May 2012, which prescribed a ceiling of 12 minutes of advertisements in a clock hour in broadcast of a program. These regulations were primarily intended to monitor and enforce the advertisement duration ceiling.
2: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर 20 लाख पेशेवरों को तैयार करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कल जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था में किए जा रहे सुधारों से फिल्म निर्माताओं को पायरेसी से बचाने में भी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाता है जिसमें उन्होंने वर्ष 2019 में फिल्म निर्माताओं से कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग और निर्माण का आह्वान किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने जम्मू कश्मीर सरकार को फिल्म निर्माताओं और सिनेमा से जुड़े पेशेवरों को एक मंच पर लाने के लिए शुभकामनाएं दी।
0: एंड नाउ लेट्स टेक अ पीप इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इन क्रिकेट, इंडिया प्रोड्यूस्ड ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस टू थ्रैश बांग्लादेश बाय 40 रन्स इन द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन्स एशिया कप 2026 इन दुबई लास्ट नाइट। इंडियाज विक्ट्री सिक्योर्ड देयर प्लेस इन द वुमेन्स एशिया कप 2026 फाइनल विद द सेकेंड सेमीफाइनल बिटवीन श्रीलंका and Pakistan determining their opponents. Chasing a target of 150 runs, Bangladesh struggled to build momentum as India's bowlers kept the pressure on and made 109 for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs.
2: Akashvani ki vishesh shrankhala प्रकृति की बात आकाशवाणी की साथ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला से बातचीत प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम में बच्चों के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर उनके कार्यों पर चर्चा होगी। ये बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है।

0: इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले सरबजीत आप बताएं चेन्नई के क्या समाचार हैं आपके पास।
1: जी मुकेश, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय लेफ्ट फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट टू द यूनाइटेड किंगडम आफ्टर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन लंडन फॉर अ फ्यू डेज एंड होल्ड मीटिंग्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट विल हैव बैक टू बैक डिस्कशंस एंड साइन अ लॉट ऑफ MOUs. And what's the update that Mukesh you are sharing with us?
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के समाचारों की। रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनस के बीच 4 अतिरिक्त गणपति स्पेशल गाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां 12 और 14 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे मुंबई से प्रस्थान करेंगी और अगले दिन सवेरे 4:20 पर कोल्हापुर पहुंचेंगी। वापसी में रेलगाड़ियां 12 और 14 सितंबर को रात 12:05 पर कोल्हापुर से प्रस्थान करेंगे और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे ये मुंबई पहुंचेंगी। पश्चिमी रेलवे ने भी दीपावली के दौरान विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने कल गणेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। उन्होंने शहर में कई प्राकृतिक विसर्जन स्थलों और कृत्रिम तालाबों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि विसर्जन जुलूसों को सुचारू रूप से संचालित करें और पर्याप्त नागरिक सुविधाएं प्रदान करें। और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने शहर के 7 जलाशयों की संयुक्त क्षमता लगभग 96% तक भर जाने के बावजूद 10% पानी की कटौती जारी रखने का फैसला किया है। सितंबर में वर्षा की अनिश्चितता और आने वाले महीनों के लिए पानी बचाने की आवश्यकता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
1: सो दीज वर ऑल इको फ्रेंडली न्यूज स्टोरीज मुकेश। सो एडिंग टू दिस बकेट, आई टू हैव एन अपडेट फ्रॉम बेंगलुरु। द बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन हैज पुट इन प्लेस मेजर्स फॉर एन इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, बैनिंग गणेश आइडल्स मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस, thermocol and chemical colors. Commissioner D.S. Ramesh said a single window system with ward-wise nodal officers has been established to expedite permissions for installing idols, with applications to be processed within 24 hours in coordination with the police, BESCOM and fire and emergency services. Temporary immersion ponds and mobile tanks will be provided to prevent pollution of lakes and water bodies. So Mukesh, indeed, you know, these kind of initiatives are highly applaudable.
0: Bilkul.
1: This talks about festivity with conservation of environment.
0: जी.
1: So moving on further, what update
0: जी,
1: do you
0: कोलकाता,
1: have for
0: कोलकाता
1: us?
0: की बात
1: जी.
0: करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कल एक संशोधन विधेयक पारित किया। इसके अंतर्गत पहली बार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के एक संस्थान से दूसरे संस्थान में तबादलों के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का तबादला कर सकते हैं। तबादला किए गए कर्मचारियों के पास अपने मूल विश्वविद्यालय में स्थायी नियुक्ति बनाए रखने या नए विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से शामिल होने का भी विकल्प होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधेयक के बारे में कहा कि सरकार का उद्देश्य नए कर्म और कम कर्मचारियों वाले विश्वविद्यालयों में अनुभवी शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती करके उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। विधानसभा में विधेयक के पक्ष में 171 वोट और विपक्ष में 15 वोट पड़ने के बाद इसे पारित कर दिया गया।
1: So, though Mukesh, we've already spoken about the news from Chennai, but I'm taking the liberty to come back to it because there's a very interesting piece of news here that, you know, dahi or yogurt is a part of our staple daily Indian diet. And Milky Mist Dairy Food has commissioned a new Skyr and Greek yogurt manufacturing facility at its integrated plant in Perundurai with an investment of around 40 crore rupees. The facility, equipped with ultra-filtration technology, has a processing capacity of up to 150 tons a day, significantly higher than the company's earlier capacity of around 20 tons a day, commissioned in 2022. The company was the first in India to introduce ultra-filtration technology for manufacturing Skyr and Greek yogurt way back in 2022. And let's move on to the news from Hyderabad. The 3-day nomination jury process for the 14th

0: ICMS Vatavaran International Environment and Wildlife Film Festival concluded yesterday at the Instructional Media Center of Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad. Held from 8 to 10 September in partnership with IMC, the evaluation process finalized 58 nominated films out of over 900 entries received from 82 countries. The event was inaugurated by MANUU Vice Chancellor Professor Saeed Anul Hassan alongside Dr. Vasant Rao, Director General of the Center of Media Studies, and IMC Director Mr. Rizwan Ahmed. And Mukesh, I am eagerly waiting to hear from you. What's the update from Delhi now?
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद, अशोक रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय तथा अमृत उद्यान 11 से 13 सितंबर तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी आयोजित नहीं होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने कल विधानसभा का दौरा किया। इनमें किरोड़ीमल कॉलेज, सुखदेव कॉलेज, लॉ सेंटर 1 और 2 तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन तथा युवाओं की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली सरकार राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचने, राहत तथा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जान माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी। और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी SCL दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। और दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सरबजीत कौर के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं।
0: जी,
1: तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है और आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई की बात करें तो वहां भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: वेल मुकेश, चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर्स विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन अगेन। मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस, maximum up to 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius. Maximum may go up to 33 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 11 सितंबर है तो आज ही के दिन सबसे पहली घटना क्या हुई थी?
0: Well, Mukesh, before we start, you know, with the list of events that happened on this day when we flip the pages of history, today is Van Shaheed Divas. Let us, you know, share this also piece of information with our listeners that All India Forest Officers Federation, AIFOF, is scheduled to observe Van Shaheed Divas on this day to remember the sacrifices of the forest workers who laid down their lives

0: to protect the forest. This day is chosen to commemorate the Khejralli massacre of the year 1730, where 360 Bishnois were killed for protecting trees. And now let's talk about the last, almost the second last segment rather, of this program, that is, which we called This Day in History. And Mukesh, 11th September, from a breakthrough in communication to a message of universal brotherhood, and later one of the darkest days in modern history, September 11 indeed has witnessed moments that changed the world. 1853, on this day, a pioneering electric telegraph line was established in San Francisco, connecting the Merchants Exchange with Point Lobos, marking an important step in the evolution of long-distance communication.
1: और तकनीकी प्रगति से अब रुख करते हैं उस ऐतिहासिक क्षण का, जब भारत का आध्यात्मिक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुए उनके संबोधन ने धार्मिक सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया।
2: And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects.
0: 13 years later, another important chapter in India's history of non-violent resistance began overseas. Yes, 11 September 1906, Mahatma Gandhi led a historic mass meeting in Johannesburg, where the Indian community resolved to peacefully resist the discriminatory Asiatic Registration Ordinance. This movement became the foundation of the Satyagraha movement. And 1973, on this day, a military coup overthrew President Salvador Allende, marking the beginning of Augusto Pinochet's rule.
1: और राजनीतिक घटनाओं से अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल और सहयोग की दुनिया की ओर, और बात करते हैं वर्ष 1998 की। आज ही के दिन इस वर्ष 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन कुआलालंपुर में हुआ था, और ये एशिया में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रमंडल खेल थे। लेकिन 21वीं सदी में 11 सितंबर की पहचान एक बेहद दुखद और भयावह घटना से जुड़ गई। जी हां, 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। चार अपहृत विमानों के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया गया, जबकि एक विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
0: 2024, on this day, the National Fisheries Digital Platform, NFDP, was launched on September 11 by the Department of Fisheries under the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Saha Yojana.
1: और अब हम याद कर रहे हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं महाकवि महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा केवल एक नाम नहीं, हिंदी साहित्य की वो रोशनी थी जिसने अपनी कविताओं में असंख्य दिलों को छुआ, जिन्हें प्यार से आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिकता की वही गहराई झलकती है जो मीरा की भक्ति में थी। 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी का बचपन साहित्य और संस्कारों की छाव में बीता। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारधारा के थे, तो माँ हेमरानी देवी धार्मिक थी और संस्कृत तथा हिंदी की विदुषी थी। यही कारण था कि महादेवी के मन में बचपन से ही शब्दों की महक बस गई। इंदौर के मिशन स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत करने वाली उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला सीखी, लेकिन उनके दिल को जो सबसे ज्यादा भाया वो था साहित्य का संसार। माँ ने उनकी इस रुचि को हमेशा प्रोत्साहित किया और यही सहारा आगे चलकर उन्हें साहित्य की बुलंदियों तक ले गया। और उनकी कविता की कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक के डोरे तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं

0: निठुर तूफान बोली, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना।
1: And Mukesh, I'd like to add here that the great Mahadevi Varma was, you know, also known as the Saraswati in the vast temple of Hindi literature, and she was also trained in music. Her compositions are noted for their expressive language and stylistic refinement.
0: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। और उनकी एक कविता, मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं, वे मेरे ही ये बंदे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं, मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरे अंत और अथ मेरा, किंतु ऐसे चाव उनके हैं, मैं ऊंचा होता चलता हूँ उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूँ।
1: Well, the next personality in our list is Subramaniam Bharati, the celebrated Tamil poet, journalist and independence activist. Known for patriotic poetry, Subramaniam Bharati was also known as a social reformer, women's emancipation champion, and he vociferously opposed to caste discrimination.
0: जी हाँ, इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। सुब्रमण्य भारती एक जुझारू शिक्षक, देशप्रेमी और महान कवि थे, और आपकी देशप्रेम की कविताएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि आपको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्य भारती ऐसे साहित्यकार थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, जबकि उनके रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये ऐसे महान कवियों में से थे एक थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था।
1: The great Subramaniam Bharati advocated Indian independence, equality, women's education and social justice.
0: और अब हम याद कर रहे हैं आचार्य विनोबा भावे को। आज उनकी जयंती है। 11 सितंबर को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गागोदा गांव के एक धर्मपरायण चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में विनोबा भावे का जन्म हुआ। भूदान आंदोलन के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे ने देश के वंचित भूमिहीन वर्ग को उनके अधिकार दिलाए। समानता की एक ऐसी संकल्पना रची जिसमें भूमिपतियों के निर्धन जन की चिंता की और उनके हित में अपनी भूमिका दान किया। अपने संकल्प के लिए वे हजारों मील पैदल चले। सर्दी में, गर्मियों में, वर्षा में, धूप में, सेवा के बल पर उन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाया। उनकी प्रेरणा से लाखों एकड़ भूमिहीन को दान दी गई।
1: In fact, Mukesh, the great Vinoba Bhave was a close follower of Mahatma Gandhi and he became an important leader of the Sarvodaya movement. Vinoba Bhave promoted Gramdan, village level voluntary sharing of land and resources, and it's important to mention here that he was the first individual recipient of the Bharat Ratna and he received it posthumously in the year 1983.
0: और आज ही भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटर नानक अमरनाथ भारद्वाज की जयंती है। उन्हें हम लाला अमरनाथ के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक लाने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है।
1: We are also remembering today the great Karaikudi Mani, a renowned Indian mridangam player and one of the most influential percussionists in Carnatic music.

0: Listeners, today is the birth anniversary of Carl Zeiss, a German scientific instrument maker, optician and businessman. It is pertinent to note that in the year 1846, Carl Zeiss founded his workshop, which is still in business, in Zeiss.
1: और अब आज जो सांस्कृतिक गतिविधियां होने वाली हैं उनके बारे में श्रोताओं को बता दें, तो आज नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे, शाम 4:30 बजे और शाम 7:30 बजे से फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जैनत डांस ग्रुप की ब्रॉडवे शैली का थिएटर प्रोडक्शन कृष्ण कथा प्रस्तुत की जाएगी। आज ही नई दिल्ली के टीजी ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से ब्लैंक कैनवास में ध्रुपद इंडिया फाउंडेशन के स्वर्णापर्ण संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से द थिएटर में सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शाम आयोजित की जाएगी और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही शाम 7 बजे से स्टीन ऑडिटोरियम में अनीता गुहा की शिष्या प्रियंका रघुरामन पुनरागम नामक एक भरतनाट्यम की प्रस्तुति होगी। तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो मुकेश कुमार और सरबजीत कौर को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
0: थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड होप यू एंजॉयड टुडेज आज सवेरे। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलप बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें ये तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
7: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े

0: English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अल-अक़वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सेमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक किलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC NET जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। और क्रिकेट में दुबई में भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर खवातीन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। कौमी राजधानी में इस अहम तकरीब के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इस दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले मुल्क शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। भारत की सदारत में होने वाली सरबराह मीटिंग का मौजू है मजबूत इख्तरा तावुन और पायदार तरक्की का कयाम। इस सरबराह मीटिंग में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेदशकियान, अबूजहबी के वली अहद शहजादे, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहान और इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली शामिल हैं। ब्राजील की नुमाइंदगी वहां के वजीर खारजा माउरो वियरा करेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अस-सऊद भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुंग उन सरबराहाने ममलुकत में शामिल हैं जो इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। इधर अक़वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदर दिल्मा रोसेफ उन बैन अल-अक़वामी इदारों के सरबराहों में शामिल हैं जो इस तकरीब में शरीक होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सदर पुतिन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इधर जनूबी अफ्रीका के सदर भी आज सुबह नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं जबकि कुछ दीगर मुल्कों के रहनुमा आज बाद में पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में मुनक़दा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर ब्रिक वज़राए खारजा मीटिंग के दौरान इस ग्रुप को हतमी शक्ल दी गई। पहली ब्रिक समिट 16 जून 2009 को रूस के यकतरिनबर्ग में मुनक़द की गई थी। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद जनूबी अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल किया गया जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार अप्रैल 2011 में चीन के सानिया में मुनक़दा तीसरी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत की थी। जनवरी 2024 में ब्रिक्स में मजीद तौसी की गई और मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात इसके मुकम्मल रुकन बन गए। इस साल 1 जनवरी को भारत ने ब्रिक्स की सदारत संभाली थी। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स की सदारत कर रहा है। इससे पहले साल 2012, 2016 और 2021 में भारत ब्रिक्स की सदारत कर चुका है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
1: ब्रिक्स कारोबारी फोरम 2026 की मीटिंग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली है। दिन भर की इस मीटिंग में मेंबर मुल्कों के 1000 से ज्यादा कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स, महकमा तिजारत के

वजीर, माली उमूर के लीडर, आलमी सरमायाकार और सनती अख्तराकार शिरकत करेंगे। इसका अहतमाम सनत तजारत के सरकर्दा एवानों फिक्की, CII और SOCHM के इश्तराक से ब्रिक्स कारोबारी कौंसिल ने किया है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक अहम रूट्स पर ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया जाएगा और मोटरगाड़ियों की आमदरफ्त पर कुछ बंदिशें आयद रहेंगी। राबता सड़कों के साथ साथ जो इलाके मुतासिर रहेंगे उनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, शांति पथ, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, प्रेस एनक्लेव रोड और लाला लाजपत राय मार्ग शामिल हैं। लोगों को यह सलाह दी गई है कि वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तजवीज करदा मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। उधर दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि सभी मेट्रो स्टेशन अगला नोटिस जारी होने तक खुले रहेंगे। दिल्ली में वाकई मरकजी हुकूमत के दफातर आज बंद रहेंगे। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के लिए लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी इंतजाम में सहूलत की खातिर यह फैसला किया गया है। दिल्ली हुकूमत के दफातर, सरकारी इदारे, सभी हुकूमत के इमदाद याफ्ता और निजी स्कूल भी आज बंद रहेंगे। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात के सबब इस माह की 14 तारीख तक कौमी राजधानी में ड्रोन उड़ाने और दीगर छोटे फिजाई प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर इस माह की 11 से 13 तारीख तक राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान अवाम के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि कल राष्ट्रपति भवन के अहाते में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी नहीं होगी। 7वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 आज मुंबई में अख्ताम पजीर होगा। GFF 2026 का मौजू है इम्कानात से असरात तक, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, शमूलियाती फाइनेंस के लिए भरोसेमंद मरबूत आलमी निज़ाम। इस 4 रोज़ा फिनटेक फेस्ट में फिनटेक के मुस्तकबिल के बारे में तबादले ख्याल के लिए पॉलिसी साज, मरकजी बैंक, मालियाती इदारे, फिनटेक्स और टेक्नोलॉजी की कंपनियों समेत दीगर आलमी शराकत दारों ने शिरकत की। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बैन अल-अक़वामी माली फंड IMF ने मौजूदा माली साल की पहली सैमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। IMF के मवासलाती महकमे की डायरेक्टर जूली कोजाक ने कहा है कि तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद खिदमात और बरामदात के शोबे के फरोख की बदौलत भारतीय मईशत की कारकर्दगी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही है। उनका यह बयान भारत की शरह तरक्की के ताज़ा आदद शुमार, उसके मैक्रो इकतसादी डेटा और ईंधन दरामद करने वाले बड़े मुल्क पर खाम तेल की ज्यादा कीमतों के असरात के ताल्लुक से पूछे गए सवालों के जवाब में सामने आया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इस इकदाम से इन कारकुनों के लिए अपना नया आजिर तलाश करने या दीगर इमिग्रेशन मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने के लिए वक्त कम रह जाएगा। अगर दाखिली सलामती महकमे की इस तजवीज को हतमी शक्ल दी जाती है तो मुलाजमत से महरूम होने वाले कारकुनों को वहां कयाम के लिए इजाजत न मिलने की सूरत में बिला ताखीर अमरीका से बाहर निकलना होगा। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर सिलवासा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज में एक अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो तिब्बी तालीम और तहकीकी इदारे और दमन में हाल ही में इफ्तिताह किए गए नमो अस्पताल समेत अहम मकामात का दौरा करेंगे। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC NET जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। उम्मीदवार इस महीने की 13 तारीख तक UGC NET पोर्टल के जरिए आंसर कीज को ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं। NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पर्चों में कई गलतियों के बारे में शिकायतें मौसूल होने के बाद UGC NET इम्तिहान के इन 3 पर्चों का इम्तिहान दोबारा कराने का

0: ऐलान किया था। अमरीकी सरजमीन पर 9/11 को हुए सबसे खतरनाक हमले को 25 बरस हो गए हैं और अमरीकी शहरी इसके तकरीबन 3,000 मुतासरीन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को हाईजैक किए गए 4 मुसाफिर तैयारों को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों के जवाब में अमरीका ने अलकायदा को नेस्त नाबूद करने और उसके लीडर ओसामा बिन लादिन को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान पर फौजी हमला किया था। ओसामा 2011 में पाकिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान मारा गया था। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन के वक्त अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में भी तेज बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल तक तमिलनाडु, ओडिशा, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। दिन के वक्त ज्यादा दर्जे हरारत के बाद आज केरलम के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पथनमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुकी अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा पायदार और ज्यादा मुसावी सेहत निजाम की तश्कील की खातिर इलाकाई शराकत दारी और इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करने के भारत के अज़्म का इआदा किया है। वजीर मौसूफ ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में जुनूब मशरकी एशिया के लिए आलमी सेहत तंजीम WHO की इलाकाई कमेटी के 79वें इजलास से खिताब के दौरान ये बात कही। जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत भारत सेहत की इब्तदाई देखभाल को मुस्तहकम करना, मयारी खदमात को वसअत देना और मुतादी और गैर मुतादी बीमारियों दोनों पर तवज्जो मरकूज करना जारी रखे हुए है। इजलास में भारत को आलमी सेहत तंजीम जुनूब मशरकी एशिया खित्ते के अवार्ड से सरफराज किया गया। सेहत के वजीर ने कहा कि यह एजाज गुज़श्ता दहाई में भारत की अवामी सेहत के सिलसिले में हुसूलयाबी को तस्लीम करता है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश को 40 रन से हरा दिया। आज दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इसमें जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। कल जनूबी कोरिया के चांगवोंग में आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने एक मजबूत शुरुआत करते हुए सोने का एक, चांदी के दो और कांसे का एक तमगे समेत 4 तमगे जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखारा और मिली शाह पर मुश्तमिल खवातीन की भारतीय टीम ने R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें और अब अखबारात कहने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के इनेकाद से मुतालिक खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, दिल्ली ब्रिक्स सरबराह इजलास के लिए तैयार, मेहमानों की आमद शुरू। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत की डिप्लोमेसी का असर, ट्रंप समेत पूरी दुनिया की ब्रिक्स समिट पर नजर। इसी अखबार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी नुमाया किया है कि भारत तरक्की और अमली तआवुन को तरजीह देना चाहता है। वजीर आजम मोदी की इस्माइली तबके के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की खबरों को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। इसके अलावा अहम बैन अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, यमन में हौसियों का बुहरे अहमर के साहिली शहर मोखा पर कब्जा, ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाब जीतने पर हर अमरीकी शहरी को $5,000 देने का वादा किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अल-अक़वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के कयाम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज़ पेश की है। और क्रिकेट में दुबई

गुड मॉर्निंग सुप्रभात 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं. और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
3: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है.
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: आठ बजकर 52 मिनट और 22 सेकंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और 11 सितंबर है जनाब, आज आप सुन ही रहे हैं सुबह से कि 11 से 13 सितंबर के बीच ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे बहुत सारी रोड्स पर, तो आप बाहर निकलें तो ज़रूर इस बात का ध्यान रख कर निकलें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लें और कुछ रोड्स कुछ रास्ते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये सभी रास्ते लगातार बंद रहेंगे, फिलहाल तो दोपहर 2 बजे से आज इन पर प्रतिबंध जारी हो जाएंगे और VVIP मूवमेंट और ज़रूरत के हिसाब से उसके मुताबिक ये डाइवर्जन्स लगे रहेंगे या हटते रहेंगे, तो इस बारे में आप ज़रूर लेटेस्ट जानकारी लेकर बाहर निकलें। वैसे ब्रिक्स समिट को लेकर और भी बहुत सारी तैयारियां की गई हैं और अगर सुरक्षा इंतज़ाम की बात करें तो लगभग 15,000 कर्मी और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको तो डेफिनेटली प्रायोरिटी दी जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करें और हो सके तो फिर दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करें। और मेट्रो की तरफ से भी फ़िलहाल यही कहा गया है कि ताज़ा जानकारी मिलने तक सभी मेट्रो स्टेशंस नॉर्मली ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशंस पर और एयरपोर्ट पर भी काफ़ी इंतज़ाम और किए गए हैं और उन रास्तों का अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं यानी वहां तक जाने के लिए जिन रास्तों का आप इस्तेमाल करने वाले हैं वहां के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लेकर चलिएगा। दिल्ली मेट्रो के लिए DMRC की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप पर भी आप नज़र बनाए रखें। क्या कहते हैं उसको, इल्तिजा की गई है या फिर रिक्वेस्ट की गई है या फिर अनुरोध किया गया है प्रशासन की तरफ से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की।

तरफ से, दिल्ली मेट्रो की तरफ से, कि दिल्ली में जो हम दिल्ली की लाइफलाइन मानते हैं मेट्रो को और इन तमाम सड़कों को, तो इन पर आप जब बाहर निकलें आज तो थोड़ा सा ध्यान रख कर निकलें और हमारे साथ एंजॉय करते रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर गोल्डन म्यूजिक को। फिलहाल रफ़ी साहब की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गाना और मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ प्ले कर रही हूँ आपके लिए।

कल जनाब आप भी शामिल रखिए हमें अपने साथ अपनी जिंदगी में, और फिलहाल सुनते रहिए, सराहते रहिए 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड को। मेरे चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह और गोल्डन म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए। इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट रेखा के साथ। तो आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक रिपोर्ट।
1: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होगी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ तटीय

दोस्तों, हम सबको अपनी जिंदगी बदलनी है पर हमारे पास टाइम ही नहीं है, है ना। हर दिन हम ये सोचते हैं कि भाई आज से शुरू करेंगे और फिर होता क्या है हम सुबह सुबह उठते हैं और लग जाते हैं अपने फोन पर और फिर ऐसे ही हमारा पूरा दिन न जाने कब कहाँ गायब हो जाता है और फिर हमें रिग्रेट होता है कि ओ आज सुबह उठते ही मैंने जो फोन छुआ था उसी ने आधा मेरा वक्त खराब कर दिया था। तो भाई ऐसा मत करिए, कोशिश करिए कि सुबह की जो शुरुआत होती है ना उसे एक नए अंदाज में करिए। हर सुबह उठते ही कुछ चीजें हैं, एक घंटा नहीं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको करनी है। चलिए आज मैं आपको एक मंत्र देती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन मत छूइए सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला मिनट, गहरी सांस लीजिए और भगवान को शुक्रिया कहिए कि आज एक नया दिन मिला। दूसरे मिनट में आज का एक छोटा सा लक्ष्य सोचिए कि आज मुझे एक अच्छा काम करना है, आज मुझे ये करना है। कोई भी काम जो आप कई दिनों से सोच रहे हैं करने का, आज उसे डिसाइड कीजिए। तीसरा मिनट, अपने आप से कहिए मैं कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है। और चौथे मिनट में मुस्कुराइए बिना वजह के, खुद को देखिए मुस्कुराहट के साथ। पांचवा मिनट, अपने पेरेंट्स या अपने परिवार को मन ही मन उन्हें अपना प्यार भेजिए, उन्हें याद करिए और उन्हें उनके बारे में कुछ अच्छा सोचिए। उन्हें दिन भर आप किस तरह अच्छा फील करा सकते हैं इसके बारे में सोचिए। बस 5 मिनट, न जिम न किताब, ये 5 मिनट आपके पूरे दिन का मूड सेट कर देंगे। करके देखिएगा, 7 दिन में आपको खुद फर्क नजर आएगा, क्योंकि सुबह सुधर गई तो समझो पूरा दिन सुधर गया और दिन सुधर गया तो समझो जिंदगी खुद ब खुद सुधर गई, है ना। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 9:13 और 9 सेकंड्स हो चुके हैं, तो भाई शुरू कर दे, म्यूजिकल दिल लगी।

दोस्तों, साक्षरता जीवन का सबसे सुंदर तोहफा है। ये वो जादू है जो एक अंगूठे को हस्ताक्षर में बदल देता है। ये वो रोशनी है जो सिर्फ घर नहीं, सोच को भी रोशन कर देती है। जब हम पढ़ना सीखते हैं तो हम सिर्फ किताब नहीं

पढ़ते हम दुनिया पढ़ना सीख जाते हैं, हम अपना हक पढ़ना सीख जाते हैं, अपना कल लिखना सीख जाते हैं। और इसीलिए तो शुरुआत की गई न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की, जिसे उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित वयस्क शिक्षा योजना है ये, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 22-23 से 26-27 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। अगर मैं इसकी खासियतों की बात करूं तो इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो 15 साल से और उससे अधिक उम्र के जो 5 करोड़ गैर साक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाना है। योजना के लिए लगभग 1,037 करोड़ का बजट तय किया गया है, जिसमें 700 करोड़ केंद्र सरकार का और लगभग 337 करोड़ राज्य सरकारों का हिस्सा है। ये पूरी तरह स्वयं सेवा और कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित है, जिसमें पढ़ाने और सीखने का काम स्वयं सेवकों के माध्यम से होगा। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी, आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान इसके खास पहलुओं में से एक है। और अगर मैं बात करूं इसके बाकी पहलुओं की तो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स यानी महत्वपूर्ण जीवन कौशल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट यानी व्यावसायिक कौशल विकास, बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी सतत शिक्षा, ये सभी कुछ इसके अंदर शामिल है। और अगर मैं बात करूं तो ये योजना खास तौर से तकनीकी आधारित और ऑनलाइन मोड से संचालित की जाती है। NCERT के दीक्षा पोर्टल और उल्लास मोबाइल ऐप के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। और इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का विवरण आप देख सकते हैं। तो अगर आपके आसपास भी 15 वर्ष से ऊपर कोई निरक्षर है तो आप इन्हें इस कार्यक्रम से जुड़ने में सहायता कर सकते हैं और चाहे तो खुद भी इसमें अपना योगदान देने के लिए आगे आ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का दान महादान कहलाता है। तो आइए एक वादा करें, खुद भी पढ़ें और किसी एक को पढ़ना भी सिखाएं, क्योंकि जब एक व्यक्ति पढ़ता है तो एक कहानी शुरू होती है और जब पूरा देश पढ़ता है तो इतिहास बदल जाता है ना।

0: Journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मजा जो होता है ना बहुत मीठा होता है, तो इस मजे को मैं कैसे मीठा बनाऊं मुझे पता है। फिलहाल 9:35:23 हो चुके हैं और मुझे पता है कि म्यूजिकल दिल्लगी के सफर में आपको इंतजार है एक प्यारे से गीत का। तो लीजिए ये रहा।

दोस्तों आज है 11 सितंबर और आज का दिन भी इतिहास में दर्ज है, क्योंकि हर दिन इतिहास में कुछ ना कुछ वजहों से दर्ज होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज के दिन को हम क्यों याद करते हैं, चलिए बता दूं आपको। एक तो वजह ये है कि आज महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि है, जो कि हर साल 11 सितंबर को मनाई जाती है। उनका निधन आज ही के दिन 11 सितंबर 1921 को हुआ था। वो एक महान कवि थे, पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक थे। उनकी ओजस्वी रचनाओं ने देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और सामाजिक समानता को, इस भावना को जागृत किया था और तमिलनाडु सरकार उनकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में भी मनाती है। और अगर मैं बात करूं आज ही के दिन की, तो आज एक और चीज होती है और वो है आचार्य विनोबा भावे की जयंती। हर साल जो कि 11 सितंबर को मनाई जाती है, उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गागोडे गांव में हुआ था और वो महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 1951 में गरीबों और भूमिहीनों के लिए प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अमीर जमींदारों से स्वेच्छा से अपनी जमीन का हिस्सा दान करने का आग्रह करना, जिसके बाद गरीब और भूमिहीन किसानों के बीच इसे मुफ्त में बांटा जा सके। इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव, जो कि अब यदाद्री भुवनगिरी जिले के तौर पर जाना जाता है, इससे हुई। पोचमपल्ली के जमींदार वेदीरे रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले अपनी 100 एकड़ जमीन दान में दी थी। ये पूरी तरह से महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन था और ये आंदोलन बाद में ग्राम दान में बदल गया, जहां पूरे गांव के लोग अपनी जमीन को किसी एक व्यक्ति की ना मानकर पूरे समाज की संपत्ति मानने लगे थे। इस आंदोलन के तहत लाखों एकड़ जमीन दान में मिली, जिसने ग्रामीण भारत में बिना किसी लड़ाई झगड़े के सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया। विनोबा भावे को 1958 में पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए आपको काम की, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद

दोस्तों, कभी कभी किसी से हमारी कोई नाराजगी हो जाती है, कभी हमें किसी पर कोई गुस्सा आ जाता है, तो हम उसे जल्दी से माफ नहीं करते क्योंकि माफ करना हमें कमजोरी लगती है, ताकत नहीं। हमें लगता है कि भाई हमने अगर माफ कर दिया तो सामने वाला जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। पर सच इसके एकदम उलट है। माफ करना हार नहीं, ये आजादी है। जब तक हम किसी को माफ नहीं करते, हम उसी गुस्से उसी तकलीफ को अपने कंधे पर लेकर घूमते रहते हैं। नींद हमारी खराब होती है, दिल हमारा दुखता है और सामने वाला अपनी जिंदगी में मस्त रहता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करने का मतलब है अब मैं इस बोझ को और नहीं ढोना चाहता। ये कमजोर लोग नहीं करते, कमजोर तो बदला लेते हैं। माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज किसी एक इंसान को अपने मन में ही माफ कर दीजिए। भले आप सामने से ना कह पाए, लेकिन दिल में ही सही, माफ तो कीजिए। देखिएगा मन कितना हल्का हो जाता है, क्योंकि माफ करके आप उस पर नहीं खुद पर एहसान कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी कभी किसी से कोई नाराजगी हुई है तो छोड़िए ना, जाने दीजिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना अपने लिए फायदेमंद होता है और हमें दूसरों से ज्यादा अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि गुस्से से हमारी ही सेहत खराब होगी, दूसरे की नहीं।

रिया, अपनों से प्यारा भला कौन होता है। हम अपनों को कभी कभी डांट भी देते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। आपस में चलता है, बड़े लोग आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को मना सकते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना घर के, वो बहुत छोटे होते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटना, मारना, उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो कभी कभी उन पर बहुत ज्यादा असर हो जाता है। पर कभी आपने सोचा है कि ये तरीका उनके मन पर कितना बुरा असर डालता है? जब हम बच्चों को डांटते हैं, वो उस वक्त चुप हो जाते हैं, सीखते नहीं हैं, वो डरना सीख जाते हैं, बताना बंद कर देते हैं, फिर वो अपनी बातें हमसे नहीं बाहर वालों से कहने लगते हैं। अगर वो गलती करे तो चिल्लाइए मत, उसके पास बैठ जाइए, उसकी आंखों में देखिए और प्यार से पूछिए, क्या हुआ, क्यों किया तुमने ऐसा? जब आप दोस्त बनकर पूछेंगे ना, वो सच बताएगा, और जब वो सच बताएगा तभी आप उसे गलत और सही समझा पाएंगे। याद रखिए, बच्चा आपकी डांट से नहीं, आपके बर्ताव से सीखता है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही वो बनेगा। तो आज से टीचर नहीं, उसके दोस्त बनकर देखिए, आपका बच्चा आपको खुद अपनी दुनिया में ले जाएगा और फिर आप दोस्त बनकर उसके सबसे करीबी महसूस करेंगे। कोई बात वो आपसे छिपाएगा नहीं, और जब बच्चे कुछ नहीं छिपाते हैं तो उनकी गलतियों पर हमें उन्हें सिखाने का मौका मिलता है ना?

भैया वक्त ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ है और आपकी हमारे साथ। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। फिलहाल वक्त है समाचारों का, और समाचारों के बाद 10:30 बजे फिर से मिलूंगी लेकर दिल का मेल बॉक्स। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
1: फॉर ब्रिक्स पर्टिकुलरली हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी,
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: Take to the world as a trusted partner.
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Prime Minister Modi is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jayashankar said the summit is taking place at a time when the global political and economic order is undergoing significant changes.
1: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have

साहित्यानुरागी श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज कलाकार बेमिसाल में हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता का जिनकी कला में साहित्य की गरिमा, रंगमंच का अनुशासन और जीवन की गहरी संवेदना साथ साथ दिखाई देती है। अभि भट्टाचार्य एक ऐसा नाम जिसने हिंदी और बांग्ला दोनों सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। कभी वे शिक्षक थे, कभी चिकित्सक, कभी एक अधिकारी तो कभी पौराणिक चरित्रों में कृष्ण और विष्णु। उन्होंने पर्दे पर किरदार बदले मगर अभिनय की वो शालीनता नहीं बदली जो उनकी अपनी पहचान थी। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य से अनुराग रखने वाले इन कलाकार की फिल्मी यात्रा शुरू हुई बॉम्बे टॉकीज की नौकाडूबी से और आगे चलकर उन्हें मिले बिमल रॉय, सत्येन बोस, गुरुदत्त और ऋत्विक घटक जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का भी अवसर मिला। तो आइए अभि भट्टाचार्य की इसी बहुरंगी

0: गरिमा मय कला यात्रा के कुछ पन्ने हम खोलते हैं और शुरुआत करते हैं फिल्म जागृति के इस गीत से।
1: सभी उलट गए

अभी भट्टाचार्य का जन्म 20 नवंबर 1921 को अविभाजित बंगाल के राजशाही के निकट एक गांव में हुआ। माँ के निधन के बाद उनका बचपन गया में बीता, जहाँ मामा के घर उनकी शिक्षा हुई। यहीं उनके भीतर संगीत, कविता और नाटक के प्रति अनुराग जागा और रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से उनका विशेष लगाव बना। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद सिनेमा की ओर खिंचाव उन्हें कलकत्ता ले गया। फिर हितेन चौधरी के निमंत्रण पर बंबई पहुंचे और एक स्क्रीन टेस्ट ने उनकी राह बदल दी। 1947 में बॉम्बे टॉकीज की नौकाडूबी में उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर बनी इस फिल्म का निर्देशन नितिन बोस ने किया था। इसके बाद बंगाल और बंबई के बीच उनकी अभिनय यात्रा चलती रही। 1952 में डीएन सरकार के

न्यू थिएटर्स की महाप्रस्थानर पथे की हिंदी रूप यात्रिक फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक नई पहचान दी। साहित्य से शुरू हुआ ये रिश्ता अब रूप पहले पर्दे पर अपना रूप पा चुका था। तो आइए श्रोताओं, यात्रिक फिल्म से ही वीरेन बल के सुर में और पंकज मलिक द्वारा रचित ये आराधना गीत सुनें।

बांग्ला सिनेमा में ऋत्विक घटक की सुवर्ण रेखा उनके अभिनय का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही। 1965 की इस फिल्म में अभय भट्टाचार्य ने ईश्वर की भूमिका निभाई। मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा से लेकर ऋत्विक घटक के गंभीर सिनेमा तक

काम लगातार विस्तार पाता रहा। बाद के वर्षों में अभी भट्टाचार्य ने पौराणिक फिल्मों में भी महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिकाएं निभाई। महाभारत में वे कृष्ण बने और तुलसी विवाह, किसान और भगवान तथा हरि दर्शन में विष्णु की भूमिकाओं ने उनकी पहचान का एक नया पक्ष सामने रखा। नायक, चरित्र अभिनेता और पौराणिक पात्र, अभी भट्टाचार्य ने अपने अभिनय में इन सभी रूपों को अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाया। आइए उनकी फिल्म महाभारत में लता जी के सुरों से सुशोभित ये मधुर गीत सुनें।

फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित अभी भट्टाचार्य ने 4 दशकों से अधिक के अपने सफर में 150 से अधिक हिंदी और 21 बांग्ला फिल्मों में अभिनय किया। नायक से चरित्र अभिनेता और पौराणिक पात्रों तक उनके अभिनय के रंग इतने विविध रहे कि किसी एक भूमिका में उन्हें बांधना संभव नहीं। आज 11 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संयोग भी उल्लेखनीय है कि इसी दिन वर्ष 1953 में उनकी अभिनीत फिल्म रत्न दीपम का तमिल संस्करण प्रदर्शित हुआ था। मानो उनकी स्मृतियों से जुड़ा ये दिन सिनेमा के इतिहास में भी अपनी एक अलग छाप ही लिए हुए हो। अभी भट्टाचार्य की यही विविधता

यही सहजता और हर किरदार को अपनी पहचान देने की क्षमता उन्हें बनाती है एक कलाकार बेमिसाल। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको छोड़े जा रही हूँ अमर प्रेम फिल्म की इस यादगार रचना के साथ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रियांशी भटनागर का आप सभी को सस्नेह नमस्कार।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
0: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी भलाई से मुतालिक उमंगों के साथ मुस्बत मुजाकरात की उम्मीद जाहिर की है। जैसा कि आलमी रहनुमा कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में यकजा हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। कौमी राजधानी में ब्रिक्स तजारती फोरम का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने के मौके पर बढ़ती हुई मजबूती, पायदार तरक्की और ताउन के लिए कहा है। भारत ने अमरीका में 9/11 के वहशियाना हमलों के 25 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया है। चीन के शहर मोकी में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज दोपहर भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। और अमरीकी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन एरिना सेबालेंका और दूसरे दर्जे की एलिना रिबाकिना खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कल से शुरू होने वाली 18वीं ब्रिक्स सबरा मीटिंग में शिरकत के लिए दुनिया भर के रहनुमा नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि सबरा मीटिंग में दुनिया की खुशहाली के रहनुमा उसूल के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बामाना और तामीरी बातचीत की जाएगी। भारत मंडपम में होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले ममालिक शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। भारत की सदारत में होने वाली सरबराह मीटिंग का मौजू है मजबूत इख्तरा ताउन और पायदार तरक्की का क्याम। इस सबराह मीटिंग में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के सदर पराबुओ सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान, अबू जहबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन्नहियान और इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली शामिल हैं। ब्राजील की नुमाइंदगी वहां के वजीर खारजा माउरो विये ईरा करेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। सरबराह मीटिंग कल जामे आलमी हुक्मरानी और कसी रुखी निजाम को मजबूत बनाने के मौजू पर ब्रिक्स रुकन मुल्कों के बंद कमरे के इजलास के साथ शुरू होगी।

0: ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के रहनुमा भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स नुमाइश भी देखेंगे। इसके बाद वो मुश्तरका तौर पर शजरकारी करेंगे। शजरकारी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शानदार एशाया का अहतमाम किया जाएगा। वजीर आजम मोदी सरबराह मीटिंग के मौके पर ब्रिक्स मुल्कों के रहनुमाओं के साथ कई दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। इतवार के रोज वजीर आजम मोदी ब्रिक्स के शराकतदार मुल्कों के रहनुमाओं और मदऊ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। ये रहनुमा मजबूत इख्तरा ताउन और पायदार तरक्की का क्याम जाम आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तामीर के मौजू पर मुनक़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से पहर नई दिल्ली में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल मुतवक्के है। दोनों रहनुमा रूस यूक्रेन तनाज़े मगरबी एशिया के हालात तजारती ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन जैसे मामलों पर बातचीत करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए आज सुबह सवेरे कौमी राजधानी पहुंचे। वजीर आजम मोदी आज शाम ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान के साथ भी बातचीत करेंगे। सदर पेजश्कियान आज से पहर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात को खास अहमियत हासिल है। तवक्को है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई हालात और वाकयात गुफ्तगु के अहम मौजूआत में शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी कौमी राजधानी में अपनी मसरूफियात के दौरान अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा है कि इस्तेहकाम हर मुल्क की इक्तसादी हिकमत अमली का मरकजी उनसर बन चुका है। ताहम इसके साथ साथ वसी ताउन और मजबूत शराकतदारी के जरिए पायदारी को फरोग देने की भी जरूरत है। आज सुबह नई दिल्ली में ब्रिक्स कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि यह सरबराह मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आलमी सियासी और इकतसादी निज़ाम में नुमाया तब्दीली रोनुमा हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स मुख्तलिफ लेकिन एक दूसरे के लिए तकमीली वसाइल बाजारों सलाहियतों और तजुर्बात रखने वाली मईशतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप मुख्तलिफ तरीक़ेकार का मुवाजना करने ठोस इंतजामात को मजबूत बनाने और रुकन ममालिक के लिए दस्तयाब मौके को वसी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। वजीर खारजा ने कहा कि यह साल ब्रिक्स के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है क्योंकि इस ग्रुप के इदारा जाती ताउन के 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बरसों के दौरान ब्रिक्स अपनी रुकनियत एजेंडे और ताउन के तरीक़ेकार के लिहाज से नुमाया तौर पर तरक्की कर चुका है। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: इस दौरान रूस के इक्तसादी तरक्की के वजीर मक्सिम देशनिकोफ ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक आलमी मईशत के तकरीबन एक चौथाई हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं और ये एक पायदार मुस्तकबिल के लिए मजबूत आवाज़ हैं। ब्रिक्स आलमी मईशत में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। ग्रुप की उभरती हुई मईशत और तजारती अहमियत पर पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में उभरती और तरक्की करती हुई 11 बड़ी मईशतें यकजा हुई हैं। इससे आलमी आबादी के तकरीबन 49.5%, आलमी जीडीपी के तकरीबन 40% और आलमी तिजारत के तकरीबन 26% हिस्से की नुमाइंदगी होती है। ब्रिक्स ममालिक एक दूसरे को तकरीबन 1.10 ट्रिलियन डॉलर मालियत की अशिया बरामद करते हैं जो उनकी मुश्तरका आलमी बरामदात के 18.8% हिस्से के बराबर है। ये ममालिक अपने साथी ब्रिक्स अरकान से 1.4 ट्रिलियन डॉलर मालियत की अशिया दरामद भी करते हैं जो उनकी आलमी दरामदात का 21.6% हिस्सा है। ब्रिक्स मुल्कों के साथ ही भारतीय अशिया की मजमुई तिजारत 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर थी जो 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गई है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं इरम नाज।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगरचे दहशतगर्दी का खतरा मुसलसल नई शक्ल अख्तियार कर रहा है, भारत का हर किस्म की दहशतगर्दी की रोकथाम का अज़्म दस्तूर गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका में होने वाले खतरनाक 9/11 दहशतगर्दाना हमलों के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि दहशतगर्दी के सबब दुनिया भर में बेशुमार इंसानी जानें तलफ हुई हैं। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार होने की हैसियत से भारत कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी की लानत से निपटने की तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने 2014 में अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम के अपने दौरे की कुछ झलकियाँ भी शेयर की। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया कि मेट्रो खिदमात ब्रिक्स समिट के दौरान ट्रैफिक बंदिशों की वजह से इतवार को सभी लाइनों पर

0: सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह फैसला इम्तहानात में शामिल होने वाले तलबा और आम लोगों के बआसानी और बरवक्त आने जाने में सहूलत के मकसद से किया गया है। चीन के मोकी शहर में जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम सेमीफाइनल में मलेशिया की टीम के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:15 से खेला जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन एरिना सेबालेंका और दूसरे दर्जे की एलिना रिबाकिना के ने खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। एलिना ने न्यूयॉर्क में दूसरे सेमीफाइनल में चौथे दर्जे की कोको गोफ को 3-6, 6-4 और 6-4 से हराकर तीसरे ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए जगह बनाई। मर्दों के सिंगल्स में सरकर्दा खिलाड़ी जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला पहले सेमीफाइनल में आज देर रात एक गैर मारूफ खिलाड़ी करेन कचानोव से होगा और सेमीफाइनल में 8वें दर्जे के बेन शेल्टन से 11वें दर्जे के फ्रांसीसी तियाफो के साथ खेलेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी भलाई से मुतालिक उमंगों के साथ मुस्बत मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर की है, जैसा कि आलमी रहनुमा कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में यकजा हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। कौमी राजधानी में ब्रिक्स तजारती फोरम का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने के मौके पर बढ़ती हुई मजबूती पायदार तरक्की और ताउन के लिए कहा है। भारत ने अमेरिका में 9/11 के वहशियाना हमलों के 25 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने पुख्ता अज्म को दोहराया है। चीन के शहर मोकी में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज दोपहर भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In Men's Junior Asia Cup Hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. And in US Open Tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina set up women's singles title clash. Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. Our correspondent reports that the two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE.
2: The theme of India Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iranian President Masoud Pezeshkian and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. The summit will get underway tomorrow with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. With Suparna Saikia, this is Ankit Kumar for Akashwadi News, Delhi.
1: Ahead of the BRICS summit,

0: 3,000 पॉलिथीन शीट्स एंड ओवर 41,000 ऑफ ड्राई राशन पैकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। 1,942 पोर्ट्स आर इन ऑपरेशन व्हाइल 812 मेडिकल कैंप्स हैव बीन सेट अप। अकॉर्डिंग टू द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वाटर लेवल्स इन मेजर रिवर्स हैव रिसीडेड ओवर द पास्ट 24 आवर्स। हाउएवर, 8 रिवर्स आर स्टिल अबव द डेंजर मार्क। द गंगा रिमेन्स अबव द डेंजर मार्क एट सेवरल लोकेशंस इन पटना, मुंगेर, भागलपुर एंड कहलगांव, व्हाइल द कोसी इज अबव मार्क एट बलताड़ा इन खगड़िया एंड कुर्सेला। द पुनपुन रिवर एट श्रीपालपुर इन पटना इज रिसीडिंग बाय अराउंड 2 सेंटीमीटर्स एवरी आवर, ब्रिंगिंग रिलीफ टू पीपल इन लो लाइंग एरियाज। निधिश्री फॉर आकाशवाणी न्यूज पटना।
1: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में अरीना सबालेंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ

0: द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
4: For BRICS particularly, higher economic activity.
5: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
4: and transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
4: This year is a milestone.
5: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: ब्रिक्स टुडे represents almost 1/4.
7: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
8: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
9: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर @AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @

0: AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज राजेंद्र देशमुख यांनी गायलेला राग गौड सारंग आपल्याला ऐकवत आहोत। मध्यलय रचना 3 तालात आहे आणि द्रुत रचना ही 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ संदेश पोपटकर यांनी आणि हार्मोनियमची साथ श्याम देशपांडे यांनी केलेली आहे। ऐकूया राजेंद्र देशमुख यांनी गायलेला राग गौड सारंग।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरासोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। मित्रों, भारत में सौथी ऊंची इमारत मुंबई में आवेली छे। मुंबई ना महालक्ष्मी में आवेली लोखंडवाला मिनर्वा आ बिल्डिंग जे 78 माळानी छे अने आ बिल्डिंग 223 में बनी छे। अने आ बिल्डिंग ना टेरेस पर थी के ऊपर थी तमे पूरो अरबी समुद्र जोई शको छो। तो दुनिया नी सौथी ऊंची इमारत दुबई में आवेली छे, 2010 मा बनी हती। नाम छे बुर्ज खलीफा अने ए छे 828 मीटर ऊंची। अने मित्रों, मुंबई में ज आ जे 78 माळानी बिल्डिंग छे एनो रेकॉर्ड तोड़वा जई रही छे। 320 मीटर ऊंची पैलेस रॉयल नामनी इमारत जे हजी निर्माणाधीन छे।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम गीत गुर्जरी। गीत गुर्जरी कार्यक्रम में भरतभाई खोनानो फोन हतो अने तेमनुं केवुं छे, भाईखालामां आवेली परिमल अळस्य आ बिल्डिंग 282 मीटर ऊंची छे, तो लोअर परेलमां आवेली वर्ल्ड व्यू ए 280 मीटर ऊंची छे अने वर्ल्ड व्यू वन आ पण भाईखालामां ज आवेली छे जे 277 मीटर ऊंची छे। तो मित्र, आपणे वात करी रह्या हता भारतनी अने दुनियानी सौथी ऊंची बिल्डिंगोनी, सौथी ऊंची इमारतोनी। तो बुर्ज खलीफानी लिफ्ट ए दुनियानी सौथी मोटी अथवा तो सौथी झड़पी लिफ्ट कहेवाय छे, जे 10 मीटर प्रति सेकंडना झड़पथी दौड़े छे अथवा तो ऊपर जाए छे एवुं तमे कही शको। पब्लिक आमां 163 माळा सुधी ऊपर जई शके छे अने बे स्टेजमां ते लोको ऊपर जता होय छे। ग्राउंड फ्लोर थी 124 माळा सुधी जता आ लिफ्ट ने 60 सेकेंड एटले के मात्र एक मिनिटनो ज समय लागे छे अने त्यार बाद तमारे बीजी लिफ्ट थी आगळ 148 माळा सुधी जवानुं छे। कुल 163 माळानी बिल्डिंग छे, पब्लिक माटे 148 माळा छे। 124 થી 148 માળા સુધી જતા 30

सेकंड लागे छे, एटले के आखी बिल्डिंग 163 वाला जो तमे गणो तो 1.5 मिनिटनी अंदर तमे बुर्ज खलीफानी टोच ऊपर 163 माळे पहोंची शको छो। परंतु भारत में जे बिल्डिंगो छे ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग होवाना कारणे ए दरेके दरेक फ्लोर पर रोकाती रोकाती जती होय, एटले अही लिफ्ट केटला मिनिटमां केटलामां माळा सुधी पहोंचे एनी गणतरी करवी मुश्किल छे।

एनी ताल जुदी एनो ताप जुदो एनी नौके वर्षाधार। अरे अड़धू मुंबई कोडू मैं अड़धू बम्बा का, एक नगर नी एक डगर पर धंधो धंधो कार। अने एज नगर नी बीजी डगर पर चालू गोली बार, जहाँ मान साई थी पण मोघा रुपया आना पैसे। आ मुंबई छे जहाँ भय करता धाजी बैठे। आ मुंबई।

झेल लड़ावे रिंग जा चंपी माल तेल पकोड़ी भेल तिनाई रिंग जा शरम मुकी ने धर्म कदम नू साधु करे धतिंग अरे जे दे ती पर लैला मजनू पास करे इवनिंग अरे एज देत पर नेताओ जी रोज भरे मीटिंग भाई मानो या ना मानो एना पानी मा कहीं पे

0: आज चौपाटी देखानी।
1: हाँ
0: आज ताजमहल होटल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री देनिस मंतोरोव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस बीच प्रधानमंत्री आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी में भारत के 37 डीपटेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं जो ब्रिक्स सम्मेलन के विषय के अनुरूप हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये आयोजन कारोबारी संपर्क, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश संबंधी चर्चाओं, व्यापारिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान करेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन इसके सभी रूपों के खिलाफ भारत का संकल्प और विरोध अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ और बेहतरीन नगमे, और मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा।

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी

0: in chemical discipline. Recruitment will be based on GATE 2026 result, which will be used for initial shortlisting of candidates for further selection process. The online application portal last date of submission is 19 September 2026. Detailed advertisement and application information is available on www.mrpl.co.in/careers. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न CPSE और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स व उभरते ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति वाली विविध और एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। इंडियन ऑयल अपने आगामी पॉली ब्यूटाडाइन रबर प्लांट और PBR बिजनेस मार्केटिंग ग्रुप में इन पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। उत्पादन प्रबंधक, वरिष्ठ उत्पादन प्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रबंधक PBR मार्केटिंग। इच्छुक प्रत्याशी विज्ञापन और अन्य अपडेट के लिए देख सकते हैं 5 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अपर डिवीजन क्लर्क UDC एक रिक्ति तथा अकाउंटेंट लेखाकार दो रिक्तियां। विस्तृत दिशा निर्देश, विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों तथा निर्धारित आवेदन प्रपत्र की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rdsdeharyana.dgt.gov.in। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्यम आयुध निर्माणी देहू रोड आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कार्यकाल आधारित ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर। इस पद के लिए यदि आप जानकारी चाहते हैं शैक्षिक योग्यता के विषय में तो ध्यान दीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक BE, BTEC अथवा डिप्लोमा धारक होना चाहिए। केमिस्ट्री को मुख्य विषयों में से एक के तौर पर लेकर BSc स्नातक यदि हैं उम्मीदवार तो वे भी आवेदन कर सकते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया की सूचनाओं के लिए आप देख सकते हैं ये वेबसाइट munitionsindia.in तथा ddpdoo.gov.in। सैनिक स्कूल बीजापुर में आवश्यकता है इन पदों को भरने की। PGT केमिस्ट्री, PGT अंग्रेजी, TGT अंग्रेजी, TGT जीव विज्ञान, TGT गणित, TGT कन्नड़, TGT भौतिक विज्ञान, TGT सामाजिक विज्ञान, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग असिस्टेंट तथा सामान्य कर्मचारी MTS। शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक नियमों, शर्तों, आरक्षण, तैनाती के स्थान और वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sssbj.in। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वैज्ञानिक रिक्तियों की संख्या 99, वैज्ञानिक अभियंता SC रिक्तियों की संख्या 52, वैज्ञानिक अभियंता कंप्यूटर विज्ञान रिक्तियों की संख्या 21, वैज्ञानिक अभियंता इलेक्ट्रॉनिकी एक रिक्ति, वैज्ञानिक अभियंता PRL एक रिक्ति तथा वैज्ञानिक अभियंता इलेक्ट्रॉनिकी PRL एक रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए देखिए कृपया इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
2: Hello, namaskar and a very good afternoon, Vaishnavi. Vaishnavi, I'm sure you must have seen our city all decked up for the BRICS summit today. Many of the dignitaries have started arriving since early morning today. And Central Delhi has received a major makeover with illuminated roundabouts, floral displays and BRICS-themed signages for the upcoming summit. NDMC has also installed decorative lighting, LED hoardings and undertaken extensive horticultural work across the city. Key routes linking the airport, designated hotels and the summit venue, that is the Bharat Mandapam, are a focus for beautification and sanitation efforts. The BRICS Friendship Rose Garden in Chanakipuri has been revitalized, showcasing India's commitment to hosting the international event, and all the key leaders of BRICS members and partner countries along with outreach invitees are expected to take part in the discussions on strengthening cooperation and key global and regional issues for the next 2 days. The preparations are part of a wider effort to spruce up public spaces and ensure the city of Delhi is ready to receive delegates and visitors for the summit. We will certainly keep you updated on all the important developments which will take place in the next couple of days. So keep tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz. Shall we begin with that's making news at this hour of the day, Vaishnavi?
1: Jee.
2: Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspirations for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow.
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी।
2: BRICS Business Forum begins in National Capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years.
1: अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया।
2: And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina set up women's singles title clash. And moving on, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And Vaishnavi, today we will talk about 25 years of 9/11 terror attack and Digvijay Divas.
1: Anuja, 11 सितंबर की जो तारीख है, इतिहास के पन्नों में दो बिल्कुल अलग यादें समेटे हुए हैं, एक गहरी पीड़ा की और दूसरी महान गौरव की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिका के अन्य हिस्सों में हुए इन हमलों में लगभग 3,000 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया ने उस दिन आतंकवाद का एक ऐसा भयावह चेहरा देखा जिसने आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की दिशा बदल दी।

0: इस त्रासदी को याद करते हुए आज हम उन सभी मासूम जिंदगियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो नफरत और आतंक की आग में हमेशा के लिए खो गई। लेकिन 11 सितंबर का एक दूसरा अध्याय भारत के लिए असाधारण गर्व का है। 1893 में इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती से दुनिया के सामने भारत की उस महान संस्कृति का परिचय कराया जो मानवता, सहनशीलता और भाईचारे में विश्वास करती है। शायद यही संयोग हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है, जिस तारीख को दुनिया ने नफरत और हिंसा का भयावह चेहरा देखा, उसी तारीख ने भारत की धरती से निकले एक ऐसे संदेश को भी इतिहास में अमर होते देखा जो पूरी मानवता को एक पूरे परिवार की तरह मानता है, वसुदेव कुटुंबकम। दिग्विजय दिवस इसी भारत की उस वैश्विक विजय का प्रतीक है जिसकी पहचान किसी पर विजय पाने में नहीं बल्कि अपनी करुणा, अपनी संस्कृति और पूरी मानवता को एक परिवार मानने की सोच में है।
1: Yes, Vaishnavi, Digvijay Divas celebrates the moment when India's spiritual and cultural voice reached a global audience, offering a vision rooted not in conquest, but in dialogue, acceptance and shared humanity. And decades later, the contrast with the tragedy of 9/11 makes the message even more powerful, reminding us that humanity's greatest strength lies not in dividing people, but in bringing them together.
0: बिल्कुल, आतंकवाद ने 11 सितंबर की तारीख का अर्थ हमेशा के लिए बदल दिया। 2001 की उस सुबह लोग एक और सामान्य दिन की उम्मीद के साथ जागे थे, लेकिन दिन खत्म होने से पहले ही लगभग 3000 लोगों की जान जा चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी।
1: Yes, on 11th of September in 2001, members of Al-Qaeda carried out coordinated attacks in the United States. Four passenger aircraft were hijacked, two crashed into New York's World Trade Center. One struck the Pentagon and another crashed in Pennsylvania after passengers and crew attempted to regain control.
0: अमेरिका ने इसके जवाब में एक ऐसी नीति अपनाई जिसने आने वाले वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया, तालिबान शासन को सत्ता से हटा दिया गया और अलकायदा का नेतृत्व भी पूरी तरह कमजोर हो गया।
1: एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. And that thought becomes specially meaningful here. 9/11 changed the world, but the story that followed is still being written.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9/11 हमलों की 25वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भले ही आतंकवाद का खतरा लगातार अपना स्वरूप बदल रहा हो, लेकिन आतंकवाद के हर रूप और हर तरीके के खिलाफ भारत का संकल्प और उसका विरोध अडिग है।
1: And as a country that has faced the painful reality of cross-border terrorism for decades, India has remained at the forefront of the global fight against this scourge.
0: लेकिन 11 सितंबर को खास बनाने वाली एक और बात है अनुजा। 2001 के उस त्रासदी से ठीक 108 साल पहले 11 सितंबर 1893 को समुद्र पार अमेरिका की धरती पर भारत की एक और आवाज पहुंची थी, नफरत या हिंसा की नहीं बल्कि स्वीकार्यता, सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश की।
1: In Chicago, Swami Vivekananda stood before the world's parliament of religions and began with five words that would become immortal. Sisters and brothers of America. The response was extraordinary. The audience rose in applause, and India's ancient spiritual philosophy found a powerful new voice on a global stage.
0: विवेकानंद सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे थे, वे दुनिया के सामने भारत का एक विचार रख रहे थे, एक ऐसा विचार जिसमें सभी धर्मों और संस्कृतियों के लिए सम्मान हो और पूरी मानवता को एक परिवार के रूप में देखा जाए। उनका संदेश भारत की शाश्वत सोच वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाता था, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है।
2: मानवता के इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ ही होंगे जहाँ किसी व्यक्ति के आरंभिक शब्दों ने दुनिया को इतना रोमांचित किया हो जितना शिकागो विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी भाषण ने किया था।
3: It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept

0: evidence as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
1: दुनिया भर के नेता स्वामी जी के अनुकंपा, बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख करते रहे हैं। जब स्वामी जी भारत वापस आए तो तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ही स्वामी जी की शिकागो यात्रा प्रायोजित की थी।
2: And perhaps this is where the two September 11s leave us with a profound question. When hatred builds walls, what is it that can bring humanity together? Vivekanand had offered an answer more than a century ago. Understanding, tolerance, compassion and mutual respect.
3: 11 सितंबर हमें याद दिलाता है कि इंसानियत के सामने हमेशा एक विकल्प होता है, बंटवारे और संवाद के बीच, नफरत और सद्भाव के बीच।
2: And moving on to the next dateline topic, which is National Forest Martyrs Day.
3: अनुजा, क्या हो अगर हम आपको बताएं कि भारत में सदियों पहले लोग किसी राज्य या युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए थे। ये कहानी हमें राजस्थान की खेजड़ली तक ले जाती है, जहां ग्रामीणों का साहस भारत के पर्यावरण इतिहास का एक असाधारण अध्याय बन गया।
2: And today on National Forest Martyrs Day, we remember not only forest officers, guards and rangers who have lost their lives protecting our forests and wildlife, but also those communities whose deep bond with nature has been part of India's civilizational ethos for centuries.
3: इस दिन की कहानी 1730 की है। जोधपुर के पास खेजड़ली में महाराजा अभय सिंह की सैनिक लकड़ी के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने पहुंचे थे। उनके सामने एक बिश्नोई महिला खड़ी हो गई, अमृता देवी। उन्होंने एक पेड़ को गले लगा लिया और उसे काटने से रोकने के लिए अपनी जान तक देने का फैसला किया।
2: Her sacrifice inspired others to follow. By the time the protest ended, 363 Bishnois had lost their lives while trying to protect the trees. The king eventually ordered the felling to stop.
3: अमृता देवी की कही बात पीढ़ियों तक याद की जाती रही है। उन्होंने मारवाड़ी में कहा था, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ है, अगर किस सिर देकर भी पेड़ बच जाए तो ये सौदा सस्ता है, यानी पेड़ कटने से बेहतर है कि इंसान अपना सिर कटा दे। इन लोगों के लिए पेड़ सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, पेड़ जीवन का हिस्सा था, छाया का, भोजन का, आश्रय का और पूरे समुदाय के अस्तित्व का।
2: एंड बिकॉज व्हेन अ फॉरेस्ट सर्वाइव्स वैष्णवी, काउंटलेस लाइव्स सर्वाइव विद इट। दैट इज व्हाई एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, व्हाइल पेइंग ट्रिब्यूट टुडे, Remembered the forest officers who made the supreme sacrifice for a sustainable future.
3: उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की जैव विविधता की रक्षा एक समर्पित कार्यबल करता है। पेड़, जंगल, वन्यजीव और नदियाँ सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वे उस जीवन समर्थन तंत्र का हिस्सा है जिस पर पूरी मानवता निर्भर है।
2: And recognizing the courage and sacrifice of forest personnel across the country, the government of India formally declared 11th of September as the National Forest Martyrs Day in the year 2013.
3: तो आइए आज उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने भारत के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और साथ ही खेजड़ली के उन 363 बिश्नोइयों को भी याद करें जिनके बलिदान ने 11 सितंबर को एक ऐसा अर्थ दिया जो किसी कैलेंडर की तारीख से कहीं आगे जाता है।
2: Because patriotism is not only about protecting the land we live in, it is also about protecting the life that makes that land worth calling home. And as part of our series Prakriti Ki Baat Akashvani ke saath, in our upcoming episode we speak to Dr. Archana Shukla, the recipient of the Natural Teachers Award 2026, about her work with children on environment and nature conservation.
4: मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है, उसकी विधि जो है, वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए। हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए, तो देयर वाज अ स्टूडेंट ही सेड कि मैम QR लगा देते हैं। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: And to listen to this interesting conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today in the evening at 5:10 p.m. You can also listen to the program on the News on EIR app and the News on EIR official YouTube channel.
3: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण जगत से एक बेहद सुखद खबर आई है। हमारे वन प्रहरियों के अथक संरक्षण प्रयासों की वजह से झारखंड के हजारीबाग में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके दुर्लभ भारतीय गिद्धों की रौनक फिर लौट आई है। एक रिपोर्ट।
6: पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में झारखंड का हजारीबाग जिला देश के नक्शे पर एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। कभी गायब हो चुके गिद्धों के झुंड अब हजारीबाग के जंगलों, विशेषकर महावर पहाड़ और बरही वन क्षेत्रों में आसमान की ऊंचाइयों को नापते दिखाई दे रहे हैं। DFO मोहन प्रकाश बताते हैं कि हाल ही में यहां 50 से अधिक गिद्धों के बड़े कुनबे को एक साथ देखा गया है, जो इस बात का सबूत है कि संरक्षण की जमीनी कोशिशें अब रंग ला रही हैं।
7: हजारीबाग में वल्चर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। वल्चर्स आज हजारीबाग के 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 350 से लेकर 400 तक पाए जाते हैं। पूरे झारखंड में वल्चर्स की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 5 प्रजातियां हमारे हजारीबाग। तो वल्चर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है देश के अंदर, जो बहुत पहचान रखता है और यहाँ पे इसकी टोपोग्राफी ये फेवर करता है। वल्चर्स नॉर्मली क्लिफ्स में रहते हैं, तो यहाँ पर क्लिफ्स अवेलेबल हैं, जंगल अवेलेबल है, पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक कैटल सफिशिएंट।
6: गौरतलब है कि 1980 के दशक के बाद मवेशियों को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक दवा के कारण देश भर में गिद्धों की आबादी करीब 99% तक गिर गई थी, लेकिन इस खतरनाक दवा पर प्रतिबंध और वन विभाग द्वारा हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र को वल्चर सेफ जोन घोषित किए जाने के बाद स्थिति बदली है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अमित जैन कहते हैं कि पिछले 15 वर्षों में इस सुरक्षित क्षेत्र में गिद्धों की कुल संख्या बढ़कर अब 400 के पार पहुंच चुकी है।
8: हमारे झारखंड में वल्चर की आबादी बढ़कर बहुत हो गई है, लगभग 450 से 500 इसकी आबादी हो गई है। आसपास के अलग अलग एरिया से वल्चर की रिपोर्ट हो रही है, जैसे कि रांची से, बड़कागांव क्षेत्र से, चतरा से, अलग अलग एरिया से रिपोर्ट हो रही है। ये बहुत ही सुखद बात है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए कि वल्चर की आबादी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है।
6: वनों की रक्षा में 2400 घंटे तैनात वन कर्मियों की मुस्तैदी के कारण ही आज हजारीबाग के जंगलों में प्रकृति के इन सफाई कर्मियों यानी गिद्धों की गूंज दोबारा सुनाई दे रही है। आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर जंगलों की रक्षा में अपने प्राण गंवाने वाले वन वीरों को वन्य जीवों की इस सुरक्षित घर वापसी से खूबसूरत और बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती। परिक्रमा के लिए रांची से कुंदन वर्मा के साथ मैं महविश रहमान।
2: And now we have a story from Andhra Pradesh where for years farmers in the drought prone areas of Prakasam district have depended on the monsoon for their crops and livelihoods. The first phase of the Pula Subbaiya Veligonda project has now brought new hope for a more reliable supply of water to the region. We have more on this from our correspondent.
9: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu inaugurated the first phase of the Veligonda project on August 31st and dedicated it to the nation. The project will bring Krishna River water from the Srisailam Reservoir to the Nallamala Sagar Reservoir through two tunnels. The water will then be supplied through canals for irrigation and drinking purposes. The first phase has been completed at a cost of 7,983 crore rupees. It includes two tunnels covering 18.8 kilometers and feeder canal works of about 21.8 kilometers. The Nallamala Sagar Reservoir can store 10.70 TMC of water. The project is expected to provide irrigation to 119,000 acres and drinking water to about 4 lakh people. For farmers, the availability of water can reduce dependence on uncertain rains and provide better opportunities to grow crops and horticulture produce. It can also support employment and economic activity in villages. The Veligonda project is thus expected to bring a major change to the water situation conservation in this drought-prone region. The state government has announced that the second phase of the project will be completed by 2028. With inputs from Alumurali, this is Suma for Parikrama, Akashwani News.
3: सोशल मीडिया और अत्याधुनिक तकनीक के इस दौर में

0: ये तनाव हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। आज की इस भाग दौड़ और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली जिंदगी में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा भी इन्हीं में से एक कारगर उपाय है। महाराष्ट्र में अब इस दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। आइए इस बारे में सुनते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट।
1: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को पिछले करीब 40 वर्षों से दूरस्थ माध्यम यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसे विश्वविद्यालय की मान्यता से अब सूर संजीवन नाम का एक वर्षीय संगीत चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आने वाले 15 सितम्बर से इस पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी ट्रस्ट के संस्थापक और वरिष्ठ सितार वादक पंडित डॉक्टर शशांक कट्टी ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए कहा,
2: ये सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी 4 साइंस के ऊपर आधारित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, आयुर्वेद, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विथ न्यूरो साइंस एंड ब्रेन एंटेनमेंट और मूड एलिवेशन थ्योरी, ये 4 बातों के ऊपर सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी आधारित है। म्यूजिक थेरेपी ये एक सिर्फ कला नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने का एक असरदार इलाज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी म्यूजिक थेरेपी में सूर संजीवन क्यूरेटिव म्यूजिक नाम का एक डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रही है। इस कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को साइंटिफिक बेसिस पर म्यूजिक थेरेपी की जानकारी मिलेगी। यह म्यूजिक के जरिए कई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का मौका है। यह कोर्स दुनिया भर में ऑनलाइन अवेलेबल है और पुणे और मुंबई में ऑफलाइन भी अवेलेबल है। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं। साथ में डॉक्टर्स, काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, साइकियाट्रिस्ट और सोशल वर्क के फील्ड के प्रमोशन के लिए भी ये काम में आ सकती है।
1: संगीत के माध्यम से संतुलित स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश देने वाला ये पाठ्यक्रम म्यूजिक थेरेपी के क्षेत्र में एक नया अध्याय साबित होगा। परिक्रमा के लिए माधवी कुलकर्णी, पुणे।
0: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल।
3: यस वैष्णवी, लेट्स बिगिन विथ यूएस ओपन टेनिस, वेयर सेकंड सीड एलिना रिबाकिना डिफीटेड 4th seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York, and with this win, Rybakina has set up women's singles title clash with defending champion Aryna Sabalenka and stay on course for a third Grand Slam crown.
0: और टेनिस से चलते हैं हॉकी के मैदान में। जूनियर एशिया कप हॉकी में आज चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए जबकि सुखविंदर ने 1 गोल किया। 5 बार की चैंपियन भारत ने पूल ए के अपने आखिरी मैच में चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर शानदार अंदाज में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय जूनियर महिला टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना करेगी।
3: एंड कमिंग टू द बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन अ नेगेटिव टेरिटरी टुडे। द सेंसेक्स फेल 121 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,782। द निफ्टी ड्रॉप्ड 80 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,398।
0: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: विनायक नरहरि विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के पेण जिले में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। विनोबा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था।
5: स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों से भूमि दान करने का आग्रह किया ताकि उसे भूमिहीन गरीबों में बांटा जा सके। उन्होंने गो हत्या के विरोध में भी आंदोलन चलाया।
4: विनोबा भावे विद्वान, चिंतक और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। वे मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं में पारंगत थे। हालांकि वे श्रीमद् भगवद गीता से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कुरान और बाइबल से भी प्रेरणा ली थी। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ।
5: आज सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि भी है। आधुनिक भारत के महानतम कवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के इट्टयापुरम में हुआ था। वे आध्यात्मवादी और राष्ट्रवादी भी थे।
4: भजनों से लेकर राष्ट्रवादी लेखन तक भगवान और मनुष्य के बीच संबंध पर चिंतन मनन से लेकर रूसी और फ्रांसीसी क्रांति पर गीतों तक भारती ने विविध विषयों पर कलम चलाई।
5: तिलक और वीओ चिदंबरम पिल्लई से संबंध के कारण भारती को गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती थी, इसलिए वे पांडिचेरी चले गए जहां फ्रांस का शासन था। वहीं से वे स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए तमिल भाषा में ओजस्वी लेखन करते रहे। महान दूरदृष्टा भारती ने 1920 में लिखा, आइए नृत्य और गायन करें क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।
4: जिस तरह वोल्टेयर और रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति की ज्योति को प्रज्वलित किया, उसी तरह महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु में स्वाधीनता की मशाल जलाई।
5: भारत वापस आने और कैद से छूटने के बाद भारती ने महात्मा गांधी से मुलाकात की, जो भारती के बहुमुखी और निर्भीक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने लोगों से भारती की सेहत का ध्यान रखने को कहा,
4: लेकिन ऐसा हो न सका। भारती का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 11 सितंबर 1921 को उनका निधन हो गया। जो कोयल पेड़ पर अकेली बैठी मधुर गाना गाती है, वो स्वयं तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके गीत सदैव गूंजते रहते हैं।
5: आज
0: मैं नीर भरी दुख के बदले, इन शब्दों में जैसे कोई पूरा जीवन कुछ ही क्षणों में उतर आता है। आगे कवित्री कहती है, रजकण पर जलकण हूँ बसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। यानी पीड़ा केवल दुख बनकर नहीं रहती, वे बरस कर किसी नए जीवन को जन्म भी दे सकती है। यही महादेवी वर्मा की कविता की विशेषता है। वेदना में भी करुणा है, अकेलेपन में भी संवेदना है, और आंसुओं में भी सृजन की शक्ति है।
3: यस वैष्णवी, वी रिमेम्बर महादेवी वर्मा ऑन हर डेथ एनिवर्सरी एज अ pioneering poet, freedom fighter and a core pillar of the Chhayavad movement in Hindi literature, who was honored with the prestigious Gyanpith Award in 1982 for her poetic collection Yama. She earned the title of modern Meera for the deep emotional and spiritual intensity in her poetry, such as Deep Shikha and Nihar. She was also known as the pillar of Chhayavad alongside poets like Jaishankar Prasad, Sumitra Nandan Pant and Suryakant Tripathi Nirala, as she shaped romantic and philosophical trends in Hindi verse. She was also known as the Saraswati of Hindi because poet Nirala famously praised her as the Saraswati in the vast temple of Hindu literature. And she received many other prestigious awards as well, like Padma Bhushan in 1956 and Padma Vibhushan in 1988 and the Sahitya Academy Fellowship.
0: आज गजानन माधव मुक्तिबोध की पुण्यतिथि है। उनकी रचनाओं में व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष, सामाजिक असमानता, व्यवस्था की विसंगतियां और एक बेहतर समाज की बेचैनी साथ साथ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध लंबी कविताओं में अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस विशेष रूप से चर्चित है, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है उनका अत्यंत महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। मुक्तिबोध ने कविता के साथ आलोचना और चिंतन के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव छोड़ा था।
3: Moving on, we also pay tribute to a legendary Padma Shri awarded Rajasthanian Hindi poet, freedom fighter and a social reformer whose powerful nationalist writings immortalize the heritage and bravery of Rajasthan. Yes, I'm talking about Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia. Born in Sujangarh in Rajasthan, he actively participated in the Indian freedom struggle and championed the social welfare, environmental conservation and education. He was a passionate advocate for securing official recognition for the Rajasthani language at the national level and known for his immortal works like Dhara Ro Shringar and the iconic poem. His poetry reflects profound human values and deep pride in regional identity. He was presented the Jaipur Kanhaiya Lal Sethia Award is also presented at Jaipur Literature Fest, and he was honored with Padma Shri and also received the Rajasthan Ratna Award.
0: मराठी कविता को अगर पारंपरिक छंदों से बाहर निकालकर मुक्ति अभिव्यक्ति की ओर ले जाने वाले रचनाकारों की बात हो तो आत्माराम रावजी देशपांडे, जिन्हें साहित्य जगत में अनिल के नाम से जाना जाता है, का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने मराठी कविता में देशपदी नामक 10 पंक्तियों वाली एक नई काव्य विधा के प्रयोग को भी विकसित किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
3: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इनोप्रोम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। श्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन की सभी तैयारियां जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। ब्रिक्स देशों के नेता सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह समूह सदस्य देशों को अपने अनुभवों और नीतियों की तुलना करने, ठोस व्यवस्थाओं को मजबूत करने और नए अवसर तलाशने का मंच प्रदान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री देनिस मेदुरोव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के उपायों पर चर्चा की। वित्तीय सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2 से 3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बच्चों के साथ गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि जिसको सम्मानित किया गया है।
3: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं, और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी एनईपी 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस लर्निंग ही है।
2: सो आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बेस लर्निंग कर रही हैं, और जो आपने हमें बताया कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का जो कार्य है, उसका आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है?
3: विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती है, तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आसपास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आसपास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
2: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की, उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं?
3: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है? तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम, पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी गौरैया, तो जब मैं नानी के घर जाता था बहुत सारी गौरैया आती थी, हम बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा ओके, क्या कारण है कि वो खत्म हो गई? तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम रेडिएशन। तो ऐसे आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले नहीं मैम, सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बढ़।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: बनानी पड़ेगी तो फिर ये हुआ कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए। 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए हैं, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज़बम्स। तो वो मतलब कि यस दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है, तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए, और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर ली है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है, और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चींटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 years कंटिन्यूस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया, तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है, और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
5: बिल्कुल।
3: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है, एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर।
5: सो बहुत ही, मतलब कहें कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
3: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलैबोरेट दिस वर्क। तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है, तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट, एंड लकली वी गॉट 1 lakh rupees फंड फ्रॉम देम। एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 lakh rupees से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए। तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें 3rd time नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए। तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग, एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली।
5: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है, और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे, कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
3: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां आज अपने घर

0: बना रहे हैं वो जीवों के ही थे। तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये उल्लू हमारे घरों में आ रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं, तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है। तो जब हम इसके डिजाइन की बात करते हैं, जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 इंच रखा है, इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है। दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसमें नीचे होल्स है ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके। इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए, और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है। दूसरी, हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे। और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है। आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है। दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम, तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतने छोटे में कैसे एंटर करेगी। और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटीफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए, जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
1: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट
0: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले। तो अक्सर इसको छुपा कर लगाना चाहिए, और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से, ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से, तो ये दिखना नहीं चाहिए। कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो। दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है, इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं, तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
1: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इंपॉर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है।
0: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो गौरैया जो है मैम ये ह्यूमंस के साथ रहती है, बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है। और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितने भी लार्वाज हैं, जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है। और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें। तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे।
1: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है।
0: यस यस ऑफ कोर्स मैम, जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है। तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
1: तो ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से भी?
0: यस, अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरो आसानी से आ जाती है अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
1: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो थोड़ा सा ये बताएं।
0: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे

0: बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं, तो मुझे ये लगा कि वो
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल. दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: लगे हुए पेड़ों पे क्यूआर क्यों नहीं लगा सकते, 2021 की बात है ये, तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग क्यूआर बनाइए फिर बना लोगे. तो दे सेड यस. बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे यूज्ड दे लाइक हां कर लेंगे ना मैम. दे नेवर से कि नहीं होगा. इवन आई वाज ब्लैंक की कैसे होगा. तो अगले दिन 5 क्यूआर कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया. देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था लेकिन क्यूआर बन गए थे. तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं. फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो. इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. तो फिर हमने कहा कि ठीक है क्यूआर बनाते हैं. तो क्यूआर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं. तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ. तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं. तो शुरू किया कि इस पेड़ का क्यूआर बनाना है. अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को. तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे. ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स नाइन्थ के सभी सेक्शंस के मिले.
2: बच्चों में बहुत उत्साह था.
0: सो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, क्यूआर में क्या क्या होना चाहिए. तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर क्यूआर बनाया जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था. और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो. तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे. बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये. तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है. और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी में इसका कैसे यूज करते हैं. तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गांव से आते हैं तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है. कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं. तो हमने उसमें विधि लिखी अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए. तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है. फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा.
2: कोई भी जो विजिटर है जो भी वहां से गुजर रहा है स्कैन करिए और आपको
0: यस यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट. सिंपली विद द क्यूआर स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं. फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहां कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट. तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आवर एरिया. तो शी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 72 पार्क्स. तो हमने 72 पार्क्स में क्यूआर कोडिंग की मैम और हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ. वहां के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं. और फिर हमने क्यूआर कोड्स लगाए. मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम क्यूआर कोडिंग कर चुके हैं. फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व में हमने क्यूआर कोडिंग की. एंड फिर पुणे में किया, हमने सिखाया इसको बैंगलोर में सिखाया. तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया. अब सभी स्टेट आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है.
2: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का. और जो दूरगामी फायदे क्या है, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ. एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला मैम, बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था. दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम

0: बरगद, नीम, महानीम कहाँ गए सब? ये सब कहाँ गए? जंगल जलेबी कहाँ गया? आपने इन सब को काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाईज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहाँ उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप क्यूआर कोड या पीबीएल का इंपैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ क्यूआर कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि क्यूआर कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सके कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माय स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वाज स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया, और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, तो he said कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, एंड देन ही वाज लाइक कि मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement, ma'am.
1: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस इनको मिलता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, जैसा आप कह रही हैं कि वो रिसर्च जो स्टेज है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे डायनामिक चेंजेस होते हैं प्रोजेक्ट में, उसको एक सक्सेस तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो माइंडसेट है फॉर लाइफ, ता उम्र के लिए वो एक जो कंजर्वेशन है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरा एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट्स ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं गांव में, जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ये ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए इन नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है। करना है।
1: बिल्कुल जरूरी है।

0: Centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर तो इस तरह यहाँ से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे. तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया. तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया. और यहाँ पर यह हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बीन्स रखे. तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे. तो यहाँ से सीड बीन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे.
2: बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो. ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है.
1: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, वो फील करते हैं. तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या वो हमारी बात समझते हैं. तो मैंने कहा करके देखते हैं. तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या, मैंने कहा करते हैं. तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसे सूरज की रोशनी मिल रही थी और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे. बस एक डिफरेंस जो था, हमने पांच बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था. तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था. तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी. तो मैंने इनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है. तो जो बच्चों ने बात किया, एक महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी. तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं. तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है. मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको. हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी. तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी. 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था. तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको. तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ. तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ.
2: तो बहुत ही कहें कि दूरगामी इसके प्रभाव है और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है एंड बच्चों के लिए भी उनके जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है.
1: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट. तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है. और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं.
2: डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए.
1: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन है. धन्यवाद.
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बच्चों के साथ गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत. इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com.
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.

दोस्तों, हम हर रोज न जाने कितने ही ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करते, यहाँ तक कि उनका चेहरा भी हमें याद नहीं रहता। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें हमेशा याद आते हैं, या कुछ लोग हमारे जीवन का हिस्सा भी बन जाते हैं।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से, आवाज अलका याग्निक की, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म खानदान से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत खयाम का और बोल नक्श लयालपुरी के।

दोस्तों कहते हैं कि शायरी सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती, कभी किसी की याद में, कभी किसी की मुस्कान में और कभी किसी की आंखों में भी एक पूरी गजल छिपी होती है। ऐसे ही कोमल जज्बातों को सुरों में पिरोता हुआ फिल्म साजन का ये सदाबहार गीत पेश खदमत है आपके लिए।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक

0: मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है ब्रिक्स बिजनेस समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।
1: एक्सलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, इनोवेटर्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 इयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है। आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं। ग्रासरूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही है। ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज का आधार बनाया है। रेजिलियंस की बात करें तो भारत ने एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक सप्लाई चेन्स को अधिक डाइवर्सिफाइड और रिलायबल बनाया है। इसी रेजिलियंस का परिणाम है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भरोसा दे रहा है। हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, फ्रेंड, आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2 लाख के अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज

सॉल्यूशंस का हब बन रहा है। इसकी एक झलक आपको ब्रिक्स भारत इनोवेट्स एक्सपो में दिखाई देगी। हमारे स्टार्टअप्स एआई, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरीज पर काम कर रहे हैं और डिफेंस और स्पेस में भी नए फ्रंटियर्स पार कर रहे हैं। अब हमें ब्रिक्स के माध्यम से भी इन वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, भारत इनोवेशन स्टोरी की एक और विशेषता है इनोवेशन एट पॉपुलेशन स्केल। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं और इस डिजिटल लेयर पर नए सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को एक ओपन इकोसिस्टम दिया है। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं। ब्रिक्स देशों के इनोवेटर्स भी इस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने देशों के लिए नए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है। स्टार्टअप्स और एसएमईज को मार्केट और फाइनेंस से जोड़ने के लिए हमने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड जैसी पहले की है। इन सभी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं और हमारे देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और टैलेंट का आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है। ब्रिक्स विमेन्स विंग्स बिजनेस अलायंस भी हमारे विजन का अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेनर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी को लीड करें। हमें बहुत खुशी है कि भारत में आयोजित इस अलायंस की मीटिंग में करीब 200 विमेन बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, आज जब ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा, क्या आप ब्रिक्स देशों के बीच टॉप टेन ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं?

0: क्या हम हर वर्ष 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को दूसरे ब्रिक्स मार्केट्स में स्केल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेसेस के बीच 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं? इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। ब्रिक्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप ब्रिक्स बिजनेस समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। आइए अब सुनते हैं समाचार।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम भविष्यति, एतदर्थं मञ्चः सज्जः अस्ति। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रूसदेशस्य राष्ट्रपतये व्लादिमीर पुतिनाय, चीनदेशस्य राष्ट्रपतये शी चिनफिंग इत्यस्मै, दक्षिण अफ्रीकादेशस्य राष्ट्रपतये सिरिल रामाफोसाय, मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतये अब्दुल फत्ताह असीसी इत्यस्मै, इंडोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतये प्राबोवो सुबियांतो वर्याय, ईरान देशस्य राष्ट्रपतये मसूद पेजेश्कियन, अबुधाबी देशस्य युवराजाय शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यादिभ्यः विश्वनेतृभ्यः आतिथ्यं दीयते। भारतस्य अध्यक्षपदीयस्य 25वर्षस्य विषयः सुदृढतायै नवाचाराय सहकाराय सततविकासाय च निर्माणम् इत्यस्ति। समावेशी वैश्विक शासनम् अथ बहुपक्षवादस्य सुदृढीकरणम् इति विषये ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते समापन सम्मेलनस्य माध्यमेन शिखर सम्मेलनं श्वः आरप्स्यते। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां नेतारः भारत मण्डपम् इत्यत्र भारत नवान्वेषण प्रदर्शनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ते संयुक्त वृक्षारोपणम् अपि करिष्यन्ति। यस्यानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण गाला डिनराख्यं संयुक्त भोजम् आयोजिष्यते। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स नेतृभिः सह अनेकानि द्वैपाक्षिक सम्मेलनानि आचरिष्यन्ते। श्वस्तनादारभमाणस्य 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां सम्पूर्ण विश्वस्य नैकाः नेतारः समागच्छन्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। अद्य सामाजिक सञ्चारपटले श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् अस्मिन् सम्मेलने विविध विषयेषु सकारात्मिका अर्थपूर्णा च चर्चा भविष्यति। यस्य मार्गदर्शकः उद्देश्यमस्ति विश्वस्य कल्याणमिति। भारत मण्डपमित्यत्र भविष्यति द्विदिवसात्मकं शिखर सम्मेलनं। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई इत्यादीनि एकादशानि प्रमुखाणि उदयोन्मुखानि विकासशीलानि च राष्ट्राणि एकत्रितानि भवन्तीति अस्माकं संवाददाता उक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्येतौ अद्य सायं नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र द्विपक्षीयमन्त्रणां कृतवन्तौ। उभावपि नेतारौ परस्परहितसम्बद्धेषु विस्तरेण विचारविमर्शम् अकुरुताम्। मेलनेऽस्मिन् श्रीमोदिना प्राचीनतमिळदार्शनिककवेः तिरुवल्लुवरस्य तिरुकुरल् इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रूसीभाषानुवादः राष्ट्रपतये पुतिनमहोदयाय उपहारत्वेन समर्पितः। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः पुतिनः च भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजितायाम् इनोप्रोम् प्रदर्शनीम् अवलोकयताम्। राष्ट्रपतिः पुतिनः ब्रिक्स शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अद्य प्रातःकाले एव राष्ट्रियराजधानीं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अद्यैव सायंकाले ईरानदेशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजेश्कियन इत्यमुना सहापि द्विपक्षीयवार्तां करिष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य वर्तमानां स्थितिं संवीक्ष्य इयं मन्त्रणा अतीव महत्वपूर्णा मन्यते। इतोपि स्वकीय व्यस्त दिनचर्यायाः अंगत्वेन प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासचिवेन अंतोनियो इतरश महोदयेन सहापि मेलिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य ब्रिक्स व्यापार मञ्चः अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारब्धः। अस्मिन् आयोजने सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहस्राधिकाः निगमाधिकारिणः, वाणिज्य मन्त्रिणः, वित्तीय नेतारः, वैश्विक निवेशकाः, औद्योगिकाभिनव प्रवर्तकाश्च एकत्रिताः भवन्ति। अद्य प्रातः संबोधयन् विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः निरूपितवान् यत् ब्रिक्स संघटनस्य विंशति वर्ष पूर्तौ वर्धमानायाः वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये अधिक दृढतायै सतत विकासाय सहकाराय च दृढ संकल्पः आवश्यकः। सः अवोचत् यत् गभीर सहकारेण दृढतर सहभागितया च सतत विकासस्य संवर्धनं काम्यम्। अतएव सुदृढता प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य आर्थिक रणनीतेः केन्द्र बिन्दुभूता संजाता। अपरत्र मञ्चस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयता वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन ब्रिक्स देशेभ्यः आह्वानं कृतं यत् स्वकीयं आर्थिक सामर्थ्यं जनानां कृते उद्योगावसरेषु सम्पत्तौ समृद्धौ च परिणमयितुं तैः परस्परं मिलित्वा कार्यं करणीयम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायां संजातस्य भीषणस्य नव एकादश इत्याख्यस्य आतंकवादी प्रहारस्य 25वें स्मृति दिवसे भारतेन आतंकवाद निर्मूलनाय स्वकीयः दृढ़ संकल्पः पुनरपि निरूपितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यद्यपि आतंकवादस्य स्वरूपं नैरन्तर्येण परिवर्तते तथापि सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य विरोधं कर्तुं भारतस्य संकल्पः सर्वथा निष्कम्पः दृढश्च वर्तते। एतस्य घोरप्रहारस्य 25वें वार्षिकोत्सवे अद्य सामाजिक संचारपटलीय संदेशे श्रीमोदी निरूपितवान् यत् आतंकवादेन जगति असंख्यानां निरपराधिनां जीवनं विनाशितम्। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं विगत दशकेभ्यः आतंकवाद विरोधी संग्रामे अग्रिम पंक्तौ संस्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अस्मिन् घोर प्रहारे मृतेभ्यः अश्रुपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। अथ च तेषां शोक संतप्त परिवाराणां कृते ऐक्यभावः प्रकटितः। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशा राज्ये च प्रचंडतोपि प्रचंड वृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना दत्तास्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंग, सिक्किम, गुजरात इत्येतेषु प्रदेशेष्वपि अग्रिमाणि दिनानि यावत् प्रचंड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। एतदतिरिच्य दिल्ली नगरे आगामिनि द्वित्रि दिनानि यावत् आकाशः मेघावृतः स्थास्यति, अतिलघु वर्षापि भवितुमर्हति। कनिष्ठ एशिया चषक हॉकी क्रीडायां भारतीय कनिष्ठ पुरुषदलम् अद्य प्रथमायाम् उपांत्य स्पर्धायां मलेशिया देशम् एकस्योत्तरे त्रिभिः अंकैः पराजित्य चीन देशस्य मोकवी नगरे अंतिम स्पर्धायां स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।

0: trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured export. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
1: जी प्रकाश जी, अभी हमने बातें सुनी डॉक्टर एस जयशंकर की और पीयूष गोयल जी की। जैसा कि अभी हमारे एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत को दृढ़ता अभी दिखानी होगी हमें, एक्चुअली हर देश को दिखानी होगी ब्रिक्स में, और उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जो संवहनीयता पर, सस्टेनेबिलिटी पर। और इसके अलावा अगर हम देखें आगे जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, तो ये बातें अभी कुल मिलाकर क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स देशों को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगी?
2: देखिए जी, दोनों मंत्री महोदय की बात को अगर मिला दिया जाए तो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी के अलावा पीयूष गोयल जी ने बड़ी अहम बात ये की है कि मार्केट जो है विद इन द ब्रिक्स, जहाँ 40% GDP है, विद इन द ब्रिक्स अगर हम मार्केट्स और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं और ज़्यादा एक्सेस दें एक दूसरे को, तो देर इज समथिंग कॉल्ड लुकिंग बियॉन्ड अमेरिका, लुकिंग बियॉन्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, वो जो है ना फदर, बिकॉज देन अगर आपको डाइवर्सिफाई तो करना होगा, और हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप विद इन ब्रिक्स में ट्रेड को बढ़ाइए, एक्सेस दीजिए एक दूसरे को, कंट्री टू कंट्री करेंसी का वो यूज़ कीजिए एक दूसरे का।
3: Yeah, that is exactly the point I want to make, you know, Mr. Chawla, because Piyush Goyal did say, the minister did, you know, he called upon the BRICS members to, you know, link the India's payment systems to their systems, as well as he urged the countries to trade in each other's local currencies, make digital trade global, and build together for the future emerging technologies. How important is this, especially this emphasis on, you know, strengthening the digital payment system of the various countries and linking it? Because there's always been this talk of de-dollarization has been, you know, one of the things in BRICS.
2: Well, the talk of de-dollarization offends a few people.
3: Yes.
2: Few countries in the world. So without that, without de-dollarization, because that could be an issue, without that, the country to country trade,
3: yes,
2: in local currency is very important step as suggested by Mr. Piyush Goyal, and that I think we expect a way forward, some movement right during this summit.
3: Right.
1: जी, और ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति समर्थन दोहराया। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रकाश जी, हम वित्त मंत्रियों की बात भी हमने सुनी जो कल बात हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने भी कहा है, और सबने वही जो आप पहले कह रहे थे, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
2: नहीं, बहुत सही बात है। बहुत बड़ी चिंता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको एक खतरा हो रखा है आजकल में, जब टैरिफ को हमने एक तरह वेपन बना दिया है काफ़ी मुल्कों ने, और ख़ासतौर पे खास एक देश ने अपना वेपन बना लिया है, और वो वेपनाइजेशन जो टैरिफ को आप करते हैं तो पूरे संसार में उसका असर पड़ता है, और मल्टीलेटरलिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये जो चिंता जाहिर की गई है, ये बड़ी ही वाजिब चिंता है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है।
1: जी, और चलिए अब नज़र डालते हैं हम, अब आज शेयर बाजारों का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74,782

0: इसी पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक नीचे 23,398 पर आ गया। एनएसई का मिड कैप 100 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की गिरावट आई। आज कारोबार की शुरुआत में सूचकांक काफ़ी गिरावट के साथ खुले थे। कच्चे तेल की तेज़ कीमतों और निवेशकों की सावधानी का असर बाजार पर दिखाई दिया। आखिरी घंटे में सूचकांक अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर तो आए, लेकिन नुकसान में ही बंद हुए।
1: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 121 points to close at 74,782. The Nifty dropped 80 points to settle at 23,398. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index declined 0.3% and the Small-Cap 100 index dipped 0.6%. Earlier, the markets opened with a gap down and traded with losses, weighed down by elevated crude oil prices and cautious investor sentiment. However, the indices spared initial losses during the final hour, supported by value buying and decline in oil prices.
0: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों पर नज़र डालें, टाटा स्टील में 1.7%, रिलायंस में 1.3% और सन फार्मा में 1.2% की गिरावट रही। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में HDFC बैंक में 2%, टेक महिंद्रा में 1.4% और HCL टेक में 0.8% से अधिक की बढ़त देखी गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the underperformers, realty lost 2.7%, metal dropped 2.4%, and commodities fell 1.6%. In contrast, telecommunication advanced 1%, private banks gained 0.5%, and IT added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, shares of 1,854 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
0: जी प्रकाश जी, बाजार का हाल हमने बता दिया। शुरू में आज काफी गिरावट थी, थोड़ा बीच में लगभग फ्लैट होने की हालत तक फिर बढ़ा था, लेकिन अंत में फिर 121 अंक सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी 80 अंक नीचे आ गया है। इसको देखें और इसके साथ पूरे पूंजी बाजार को अगर हम देखें, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉन्ड मार्केट की क्या हालत है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से जो पैसे का मूवमेंट है किन बाजारों से निकल रहा है और कहां जा रहा है, जापान अपने पैसे वापस ले रहा है, क्या इन सब का एक सस्टेन्ड असर अब दुनिया के बाजारों पर दिखाई देना शुरू होगा?
2: नहीं, पूरे बाजार में पहले आज की बात करते हैं।
0: जी आज,
2: आज
0: जी।
2: सुबह तो बुरा हाल था
0: जी,
2: फिर रिकवरी आई, बड़ी अच्छी रिकवरी आई। अब रिकवरी जो आई वो इस तरह से नहीं आई कि जैसे संकट दूर हो गया। रिकवरी इसको ट्रेड पार्लेंस में, टेक्निकल ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लोग जब पैनिक हुआ सुबह तो ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग काफ़ी धड़ल्ले से की। जब धड़ल्ले से शॉर्ट सेलिंग हुई तो शॉर्ट सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश की गई, इसलिए स्मार्ट रिकवरी आई। और ये एक ट्रेड काइंड ऑफ है वो है, लेकिन इससे ये नहीं कि दुनिया की चिंता दूर हो गई।
0: ये दैनिक, ये तो आज का था,
2: आज का था। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो लेटेस्ट था कि जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है और बदतर हो गई। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिक्कत थी, अब रेड सी में दिक्कत होने लगी। तब दोनों चैनल आपके ट्रेड बंद हो जाएगा, शिपिंग रूट्स बंद आएंगे, और जाहिर बात है उसका असर हमको तेल की मार्केट में मिला। क्रूड ऑयल जो 110 तक पहुंचा, फिर वापस रिकवरी हुई, तो ये उतनी उथल पुथल में मार्केट का इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है। तो अब आपने कहा कि कारण क्या है, एक कारण तो मिडल ईस्ट है, दूसरा कारण आपने कहा बॉन्ड यील्ड का। अब बॉन्ड यील्ड जो है एक अपने आप में जेम्स बॉन्ड बन गया है तो वो एक अपने आप में एक खतरा है। वो क्या दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स का, मतलब आम आदमी की भाषा में बोला जाए ये दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, ये दर्शाता है आम भाषा में कि इन्फ्लेशन का जो डर है लार्जली अराइजिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड और बाकी चीज़ों से, इन्फ्लेशन का जो खतरा है बड़ा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और उसके कारण मिडल ईस्ट भी है, उसका कारण पूरे जो संसार में खासतौर पर अमेरिका में जो उनका डेट है, उनका उधार है $40 trillion, वो अनसस्टेनेबल कोशिश की जा रही है। वहाँ के जो फाइनेंस मंत्री हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो कोशिश कर

0: हैं, किसी तरह से मैं इसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, लेकिन री इंजीनियरिंग जो है वो एक बैंडेड होती है, उससे काम नहीं चलता
1: जी।
2: लेकिन क्या आने वाले समय में हम पूंजी बाजार में एक रीबैलेंसिंग देखेंगे?
0: रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जो मैंने आपको समझाया, तो जो कैपिटल तो वहीं जाता है जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, जब कमाई ज़्यादा होती है। तो इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है, बॉन्ड यील्ड में आपको फिक्स इनकम मिलती है। आपको अगर अमेरिका में 5-5.5% मिल जाता है, 5% मिल जाता है, और देन अगर आपके एमर्जिंग इकोनॉमीज में थोड़ी दिक्कत होती है कि उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन का या करेंसी फ्लक्चुएशन का फैक्टर इन करना पड़ता है, तो सेफ्टी की तरफ कैपिटल पूंजी घूम जाती है, और वो जो है उसका असर जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इतना अच्छा नहीं पड़ता
2: जी। और देखें रुपए का हाल, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 10 पैसे गिरकर 95.55 रुपए पर बंद हुआ। और अनुभव, हमारे पास एशिया और यूरोप के बाजारों की भी खबरें हैं। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज लगभग 1.8% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 1.9% से ज्यादा गिरा। यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसे 0.6% ऊपर था, जर्मनी का डैक्स 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। यूके का रियल जीडीपी जुलाई में 0.4% बढ़ा, जबकि जून में ये 0.3% बढ़ा था।
1: Let's move on to the US markets. Major US indices ended lower for the fourth consecutive session yesterday with elevated bond yields and crude oil prices weighing on investor sentiment. The Nasdaq composite declined more than 0.6% and the Dow Jones Industrial Average as well as the S&P 500 fell 0.6%. On the economic front, the producer price index PPI for final demand rose 0.4% in August, following a 0.1% increase in July. According to the latest release data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics, PPI increased 5.4% last month on an annual basis, up from 4.8% in July. Mr. Chawla, we see that, you know, the PPI for the month of August in U.S. has risen to 0.4%. Now, there is a very important meeting which is going to happen, U.S. Fed meeting happening next week on the 15th and 16th September. What are your expectations, given the fact that the PPI has risen, given the fact that international crude oil prices have, you know, gone beyond $100 per barrel? What is the expectation? Is the chairman, Kevin Warsh, and his cohorts going to go in for a hike, start the rate hike cycle, or are they going to stay put and, you know, hold the rates?
0: Well, the chances of our rate hikes are have gone up.
1: Okay.
0: And the latest inflation numbers of the U.S., both CPI and the PPI. PPI means the wholesale
1: price. Yes, CPI is expected later tonight.
0: Consumer. Yeah. I think it's come yeah. about. So what has happened is, anyways, the inflation specter of inflation is very, very much there. And Fed has not much choice left now. They don't have much choice left.
1: Okay.
0: And the rate hike is given. The question is 1, 2, 3, 4, how many rate hikes are there?
1: And because also the question is when?
0: Well, not in too far distant. For a common man point of view, when you say rate hikes, Fed rate hikes, bond yields, it means the mortgage rates,
1: yes,
0: the credit card rates, the interest rates for American consumers are going to shoot up. The cost of living crisis might be there. People are already feeling the pressure.
1: Yes.
0: So these things are, and mind you, economists and experts also point that these high interest rate regime is not a short term phenomena, mind you.
1: Okay.
0: It's going, we are in for a long haul. So the countries must buckle up. They must prepare themselves for a scenario where interest rates continue to remain high. The party time is over.
2: वैसे भी नैस्डैक को लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अब बुल रन खत्म हुआ।
1: जी। Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell today.
2: क्रूड से पहले मुझे लगता है क्रूड के संबंध में अभी और भी काफी कुछ खबरें हैं अनुभव, जो प्रकाश जी से हमें चर्चा करनी चाहिए। कि अभी जैसा कह रहे थे हम, पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालने वाला एक

0: सबसे बड़ा कारक यह है कि सप्लाईज, हमारे क्रूड की सप्लाई कैसे होगी, कहां से होगी, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और आईईए ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह भी है कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में रोजाना 57 लाख बैरल की गिरावट आने की आशंका है। मतलब इससे फिर अब डेली जो सप्लाई है वो 10 करोड़ 7 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा वो डेली सप्लाई।
1: आईईए ने तो एक अपनी रिपोर्ट जारी किया, नंबर दिया है, बट ये जो आशंका है ये कोई इसलिए कोई अंग्रेजी बोलते हैं नो ब्रेनर
2: जी,
1: तो नो ब्रेनर है जब
0: ऐसे दिखाई दे ही रहा है
1: तो वो उन्होंने देख नंबर देके आपको स्टैंप लगा दिया, तो वो तो एक है, गिवन है। तो अब उसमें इसके फिर सवाल ये है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि वार जो है जब अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए वार को मिडल ईस्ट में, उधर से यूक्रेन रशिया को जो है उसमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, तो ऐसी शंका जताई जा रही है और ऐसा डर है और ऐसा वो है कि भाई आर वी इन ए सिचुएशन कि भाई जहाँ पे अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर एवर वॉर
2: जी,
1: जब ऐसी सिचुएशन में तो मुल्कों को अपने अपने देशों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जाए, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स बनाए जाएं, क्लीन फ्यूल की तरफ, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ के लिए आ जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट।
0: इसके साथ साथ ये अनुमान भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 25 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी आएगी, जो कि पहले के 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट के पूर्वानुमान से थोड़ी ज़्यादा है। तो अब दोनों श्रिंक होने की बात हो रही है कि शायद मांग में भी गिरावट अब
1: उसका मुझे अंदेशा है क्योंकि डिमांड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आ रहा है, उसका मुझे थोड़ा अंदेशा है
2: जी। एंड लेट्स गेट बैक टू द कमोडिटी प्राइसेस। लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $104.15 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $99.17 पर बैरल।
0: और भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% गिरकर 1,51,938 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,28,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज अनुभव वक्त इतना ही है, खबरें तो और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन अब चलते हैं प्रकाश जी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस लीडर्स सेशन ऑफ ब्रिक्स बिजनेस फोरम, सेज ब्रिक्स नेशंस आर इमर्जिंग एज की हब्स फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स 121 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,400 एंड ग्लोबल ऑयल सप्लाई एंड डिमांड टू फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर, सेज International Energy Agency. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
5: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया

0: इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "Today, BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP, and over 25% of the global trade."
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: The Prime Minister said amid global uncertainties, India today offers a source of confidence for growth and stability. He called for Make in India, Innovate with India and Scale for the World. In his address, Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal said that during India's chairship, BRICS has been driven by a clear purpose to achieve more balanced trade amongst member nations and to explore expansion of trade and services across the bloc.
3: During India's chairship, we have been driven by a clear purpose to achieve more balanced trade among our countries and to explore the expansion of trade in services across the BRIC family. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, India remains committed to ensuring that this cooperation reaches those who form the backbone of our economy. It must benefit our farmers, empower our women in business, and provide greater opportunities for wealth and prosperity to our young entrepreneurs and MSME.
1: Heads of state of BRICS member countries, including Russian President Vladimir Putin, Iranian President Masoud Pezeshkian, and South African President Cyril Ramaphosa, addressed the nation. Earlier in the day, Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin held bilateral talks in New Delhi. The two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts, and India stands ready to assist in peace efforts. President Putin invited Prime Minister Modi to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. The Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluar, during their meeting. Iranian President Masoud Pezeshkian, President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi, and Vice President of Nigeria Kashim Shettima have arrived in New Delhi for the 18th BRICS Summit. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that India and Iran share civilizational ties marked by robust cultural and people-to-people bonds. Mr. Jaiswal also said that India and Nigeria share close and long-standing ties underpinned by strong people-to-people connections. The stage is all set for the 18th BRICS Summit to be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. During the summit, Prime Minister Modi will play host to world leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The summit will get underway tomorrow with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of BRICS member countries will witness the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. They will also undertake a joint tree plantation, which will be followed by a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. Traffic restrictions, diversions and regulated movement will be enforced on several key roads in the national capital tomorrow in view of the BRICS summit. The restrictions will remain in force from 8:15 p.m. to 11 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: Surkhiyon mein.
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बहुआयामी भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का समसामयिक कार्यक्रम सुर्खियों में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात के कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक महत्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: सबसे पहले व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात को आप भारत रूस संबंधों

0: के वर्तमान दौर में किस दृष्टि से देखते हैं? बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच इसका कितना रणनीतिक महत्व है?
1: ये भारत और रशिया के संबंध हर दिशा में बहुत घनिष्ठ हैं, पुराने हैं, पर दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और 2020 के बाद रशिया यूक्रेन, 2022 में ये युद्ध हुआ, विश्व में पश्चिम एशिया में हो रहा है, एनर्जी का इशू है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है और भारत के राजनेता और रूस के राजनेता भी उससे प्रभावित हैं। तो ये जो आज वार्तालाप हुआ हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, करीब 45 मिनट तक ये बातचीत चली, और यहाँ ये भी देखना है कि पिछले हफ्ते बिश्केक में भी ये दोनों राजनेता मिले थे, तो इसमें द्विपक्षीय मुद्दे भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और ग्लोबल मुद्दे भी हैं। मैं समझता हूँ कि किसी न किसी रूप में रशिया यूक्रेन वार के बारे में जिक्र हुआ होगा, क्योंकि फिर कुछ गति इस तरफ है कि किस समस्या को किस तरह सुलझाया जाए। अमेरिका के दो प्रतिनिधिमंडल श्री विटकॉफ और जारिद कुशनर मॉस्को और कैव दोनों गए थे, और इसमें भारत का बड़ा अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा इस बार पीछे बिश्केक में भी कि राष्ट्रपति पुतिन से कि एंडलेस वार ना हो और वॉर के एंड की तरफ अब चलें, और राष्ट्रपति पुतिन में और क्रेमलिन की ट्वीट में कहा गया है कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक चीज ये है। दूसरा, जो द्विपक्षीय जो भारत के और रूस के संबंध है उनका बहुत बड़ा उनका क्षेत्र है, और उसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, अंतर सरकारी सहयोग है, आयोग है, उसकी 24 अगस्त को मॉस्को में मीटिंग हुई थी, उसके लिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वहां गए थे और वहां राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी मीटिंग हुई थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत के अपने जो संबंध है उनको कितना अच्छी तरह देखते हैं और उसको आगे की दिशा में देखते हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो भारत और रशिया के संबंधों में एक तो हमारा जो एनर्जी ऑयल का जो आयात है वो पिछले 4-5 साल में बहुत बढ़ गया है। भारत और रशिया की पूरी व्यापार 12-13 बिलियन डॉलर का होता था, जो पिछले वर्ष करीब 60 बिलियन डॉलर हुआ, उसमें 50 बिलियन डॉलर से अधिक तेल का आयात रशिया से हुआ है। भारत रक्षा के क्षेत्र में रशिया हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, मित्र है, और 2-3 चीजें हैं जो इस समय भारत उनसे और लेने के लिए बातचीत चल रही है, उस पर भी हम आगे बात कर सकते हैं।
0: जी, जैसा आपने कहा कि बहुआयामी संबंध है दोनों देशों के बीच और रूस और भारत के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंध भी काफी पुराने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री पुतिन को थिरुकुरल पुस्तक का रूसी अनुवाद भेंट किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा।
2: 2000 साल मानव जीवन के इतने ही विशेषों को समझ में नहीं पैसा उसका रुचि नहीं मिलती है। मुझे विश्वास है कि संबंधों को बढ़ाने में
0: अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं तो जब तक सोवियत संघ था तब तक उसके साथ भारत के काफी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते थे। अभी रूस के साथ भारत की क्या स्थिति है सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में?
1: जब सोवियत यूनियन था मैंने एक पोस्टिंग भी की है मॉस्को में, उस वक्त वहाँ एक इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज था जहाँ पर सब भारत की मुख्य भारतीय भाषाएं वहाँ पढ़ाई जाती थी, और वहाँ कल्चरल सेंटर और उसमें इतना कथक भारत का और भारत की फिल्में इतनी, वहाँ पे बॉलीवुड बहुत ही लोकप्रिय था, और किसी भी अगर शादी वगैरह में जाए रशियंस की तो वहाँ हमेशा भारतीय फिल्मों के गाने बजाए जाते थे। तो ये सब इसी तरह भारत में भी, अगर उन दिनों सोवियत लैंड और सोवियत ये किताबें बहुत घरों में जाती थी, ये वहाँ का जो पुश्किन टॉलस्टॉय इन सब के लिटरेचर में बहुत रशिया, बहुत ही प्रभावी लिटरेचर रशिया का रहा है, दोस्तोवस्की और टॉलस्टॉय, तो वो भी भारत में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा जाता है। प्रधानमंत्री ने एक तमिल प्राचीन जो फिलोसोफर है उनका ग्रंथ
0: हाँ जी
1: तिरुकुरल राष्ट्रपति पुतिन को भेंट किया, और रशियन लैंग्वेज में। ये एक बहुत ही एक अच्छा संदेश प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को दिया।

0: क्योंकि जो फिलोसोफर तिरुवल्लुवर और उनकी पुस्तक तिरुकुराल में इतने जेम्स है, वो कैसे परिवार रहे, कैसे राजा शासन करे, कैसे व्यापार लोग करें, इसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। और वो रशियन भाषा में हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट दी। मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही अच्छा जेस्चर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से रहा। तो ये संबंध बहुत गहरे हैं, पर इसमें अब दुनिया जिस तरह से बदल रही है और सोशल मीडिया की तरफ अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो जा रही है, तो किस तरह दोनों देश एक दूसरे के युवा लोगों को भी अपनी संस्कृति, अपनी सिविलाइजेशन और हिस्ट्री उसकी तरफ आकृष्ट करें, ये एक कार्य है जिसमें दोनों देश लगे हुए हैं।
1: जी, आपने बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात की है, तो आज के हालात में, आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप किसे पिनपॉइंट करना चाहेंगे?
0: मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्तंभ जो भारत और रशिया की मित्रता में है वो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास। ये एक जो लेगेसी है, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति स्टालिन की मृत्यु के बाद जो 1954 से शुरू हुई निकिता ख्रुश्चेव के साथ सोवियत यूनियन से, और उसको सोवियत यूनियन के टुकड़े हो जाने के बाद भी रशिया में राष्ट्रपति पुतिन जब से सत्ता में आए 2001-2002 में, उन्होंने पूरा सत्ता का ग्रहण किया, उन्होंने बहुत समय लगाया है भारत के साथ संबंध अच्छे करने में। एनुअल समिट्स उन्होंने हमेशा पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ करी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ करी, अब उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी साथ कर रहे हैं। तो एक भारत और रशिया के संबंधों में एक कंटिन्यूटी है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है और एवर एक्सपेंडिंग रिलेशनशिप है। हमें पुराना याद है कि सोवियत यूनियन टाइम में भारत के राकेश शर्मा, उनको स्पेस में भेजा गया था।
1: जी
0: इस समय भी देखिए हमारी जो आणविक पनडुब्बी है उसका जो डिजाइन है वो रूस से आया है। इस समय ब्रह्मोस कितना हमारा सक्सेसफुल रहा अभी ऑपरेशन सिंदूर में, और उन्होंने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की और टेररिस्ट अड्डों की धज्जियां उड़ा दी, वो एक जॉइंट प्रोडक्शन है भारत और ब्रह्मपुत्र एंड मस्कवा रिवर, ब्रह्मोस।
1: जी
0: और इस तरह बहुत आयाम है जिसमें भारत और रूस के संबंधों में, पर एक कुछ किस तरह ये असंतुलन ट्रेड में खत्म किया जाए ये एक मुद्दा है। दूसरा डिफेंस एड में बड़ा कहा गया है कि Sukhoi-57 जो बहुत नेक्स्ट जनरेशन का, सिक्स जनरेशन का फाइटर प्लेन होगा, उसको डिजाइन में भी वो भारत का सहयोग लेना चाहेंगे। इसी तरह हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में पैट्रियट मिसाइल S-400, वो बहुत ही कामयाब रहे। पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत के किसी भी जगह कहीं नहीं आ पाया, उसका नया वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन भी भारत को दिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी नींव भारत और रूस के बीच के संबंधों की है, उसके ऊपर बहुत अच्छी इमारत हमारे देश के दोनों नेता राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, और उसके ऊपर आज की मीटिंग के बाद एक और मंजिल उसके ऊपर बनाई जाएगी।
1: जी, आपने अभी रक्षा सहयोग पर काफी प्रकाश डाला कि भारत रूस संबंधों का पुराना और महत्वपूर्ण स्तंभ है ये, लेकिन अभी जो बदलती हुई सुरक्षा आवश्यकताएं हैं और भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का भरपूर प्रयास कर रहा है, इसके बीच दोनों देशों के रक्षा सहयोग का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं?
0: मैं समझता हूँ कि को प्रोडक्शन या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में एक स्वर्णिम भविष्य में देखता हूँ, क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो जैसे मिग प्लेन्स
1: जी
0: वो भारत में बहुत बने, सुखोई में काफी प्रोडक्शन, काफी परसेंटेज भारत में है, पूरा उनका जो टैंक्स TU
1: जी
0: थे वो सब भारत में बने, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया। बहुत पनडुब्बियों में जैसा मैंने कहा उनका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो रशिया की जो कंपनियां हैं वो भारत में को प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं, और जो मैं समझता हूँ कि शायद अमेरिका की कंपनी तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से बात LCA के लिए प्लेन फाइटर प्लेन्स के इंजिन की चल रही है, उस पर समझौते भी कुछ हुए, पर वो GE का इंजिन अभी तक भारत नहीं आया है। तो उसमें मैं समझता हूं कि रूस की कंपनियां भारत के साथ तकनीक को साझा करने में अभी कोई रोक टोक नहीं लगाते।

0: है, तो इसलिए भविष्य बहुत अच्छा है।
1: जी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उभरती तकनीकों में सहयोग की संभावनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र भारत रूस संबंधों के नए ग्रोथ एरियाज बन सकते हैं?
0: बिल्कुल, अभी रशिया की मदद से पश्चिम भारत में पहले ही दो न्यूक्लियर पावर स्टेशन काम कर रहे हैं, तीन और 1000 मेगावाट के वहाँ बनाने का काम चल रहा है, डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस पर है। और एक जो नई तकनीक दुनिया में आ रही है, मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो शायद 50 मेगावाट तक के होंगे, और उनमें सुरक्षा का इतना अधिक इशू नहीं रहेगा जो एक बड़े न्यूक्लियर स्टेशन में होता है। ये तकनीक इस समय डेवलपमेंट स्टेज पर है, भारत में भी इसमें काम हो रहा है और रूस में भी इसमें काम हो रहा है, और दोनों देशों ने निर्णय लिया है कि एक साथ मिलकर इस तकनीक को ये डेवलप करेंगे, तो इसमें एक बहुत भविष्य में काफी संभावनाएं दिखाई देती हैं।
1: जी, इसके अलावा अभी भविष्य में हम भारत और रूस के बीच क्या संभावनाएं देख सकते हैं?
0: जैसा मैंने कहा, व्यापार करीब $60 बिलियन है, और दोनों नेता जब मिले थे तो उन्होंने $100 बिलियन ट्रेड करने की बात की थी 2030 तक। तो अगर तो वहाँ का तेल, इस समय हम फर्टिलाइजर्स भी ले रहे हैं रशिया से। यूक्रेन ने कुछ ड्रोन हमले करके रशिया की जो रिफाइनरीज हैं उन पे कुछ हमला किया है, तो भारत से रिफाइंड जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह भारत निर्यात कर रहा है रशिया को, तो एक नई नई आयाम खुल रहे हैं। पर जो भारत का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनका निर्यात किस तरह रशिया में बढ़ाया जाए, और उनका जो फार ईस्ट पूरा साइबेरिया, और उसमें रशिया बहुत चाहता है कि भारत की कंपनियां आकर निवेश करें और भारत के किसान आकर वहां कुछ खेती करें, और उसका भी बहुत संभावनाएं हैं जिन पर काफी काम हो रहा है। और आगे के वर्षों में मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से भारत और रशिया के बीच में व्यापार और निवेश बढ़ेगा रशिया के फार ईस्ट क्षेत्र में।
1: जी, स्कंदर रंजन दयाल जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज की महत्वपूर्ण मुलाकात के विभिन्न कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत रूस संबंधों की भूमिका पर अत्यंत सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बहुआयामी भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in

जी हाँ दोस्तों, संगीत सुनने से और गाते गुनगुनाने से हम लोगों की जितनी भी तनाव वाली जिंदगी है, जितना भी स्ट्रेस है, वो काफी हद तक दूर होता है, दूर किया जा सकता है। और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं कि जब आपको लगे कि बहुत मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं या बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, काम का प्रेशर है, तो संगीत सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, अच्छे गीत सुनिए, जो आपको पसंद हो वो सुनिए, फिर देखिए अपने में परिवर्तन कि आप उस वक्त के लिए या थोड़े वक्त के लिए आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएंगे और फिर जो आप अपने काम को करना चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस, उस पर असर देखिएगा। और गाइएगा, गुनगुनाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, यानी आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 के साथ।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

फिल्म कालिया का ये गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत के साथ ही सांझ ढले की महफिल आज यहीं तक। संजीव अग्निहोत्री को अभी दीजिए इजाजत, लेकिन सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा, ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से भारत मंडपम में 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स की आर्थिक ताकत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि

0: देशों में नवाचार की नई संभावनाएं बढ़ रही हैं।
1: ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का ध्यान सदस्य देशों के बीच अधिक संतुलित व्यापार और सेवाओं पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस सहयोग का लाभ ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के रीढ़ माने जाने वाले किसानों, महिला उद्यमियों, युवा उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तक पहुंचे। श्री गोयल ने कहा कि सदस्य और साझेदार देशों के 2000 से अधिक कारोबारी नेताओं और प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है।
2: Merchandise exports from BRICS countries to the world.
3: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
2: Now nearly 24%.
0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के नेताओं की मेजबानी करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। एक रिपोर्ट।
4: शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों की बैठक से होगा, जिसका विषय है वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज होगा। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर दबाव से जटिलताएं और बढ़ रही हैं। इन परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिए समावेशी, व्यावहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सहयोग की आवश्यकता है। भारत की अध्यक्षता विभिन्न सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के साथ साथ मौजूदा तंत्रों की प्रभावशीलता को मजबूत करने का प्रयास करती है। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस ने लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, मेट्रो का इस्तेमाल करने, डायवर्जन वाले रास्तों और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आपातकालीन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को निकलने में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान 11 से 13 सितंबर तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आ रहे सभी नेताओं, प्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना राष्ट्रीय राजधानी के लिए सम्मान और गर्व का विषय है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, @AIRNewsHindi को फॉलो करें।
0: शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से दो दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल है, जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण विषय से जुड़े हैं। ये आयोजन भाग लेने वाले नवोन्मेषकों को ब्रिक्स सदस्य देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों, व्यापारिक नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मेलजोल का अवसर प्रदान कर रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज बताया कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। ये फैसला परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने और समय पर पहुंचने के लिए लिया गया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखें। उत्तर रेलवे ने आज से रविवार तक रेलगाड़ियों के संचालन में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है। इनमें उपनगरीय कॉरिडोर और लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली कई सेवाओं पर पड़ेगा। इन बदलावों में रेलगाड़ियों का रद्द होना, रूट बदलना, कम दूरी से शुरू होना, कम दूरी पर यात्रा खत्म होना, सेवाओं का नियमन, टर्मिनल बदलना और समय बदलना शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली, गाजियाबाद, पलवल, शकुरबस्ती और दिल्ली जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने वाली कई ईएमयू और मेमू सेवाओं पर इन बदलावों का असर पड़ेगा। यात्री नवीनतम जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियमों में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज बताया कि सरकार इस महीने की 17 तारीख से 100 दिनों का सेवा इंक्यूबेशन चैलेंज शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें 100 बड़ी नागरिक केंद्रित समस्याओं के समाधान पर काम किया जाएगा।
6: इंक्यूबेशन पॉलिसी में 400 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स को ग्रूम करने के लिए दिए हैं। अगले आने वाले 4 साल में हम 1000 स्टार्टअप्स को मेंटर करके दिल्ली में आप जैसे युवाओं के लिए 4 लाख नए रोजगार दिल्ली में खड़े कर सके।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए ईशु मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोनों में खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माणों और मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली एमपीडी और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि एमपीडी और भवन उपनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सभी जोनों में ये जांच अभियान चलाया जा रहा है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए गहन जांच अभियान के अंतर्गत निगम द्वारा सभी 12 जोनों में 25 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं एमसीडी ने कल भी व्यापक कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 41 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया और 61 अन्य संपत्तियों को मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली और भवन उपनियमों के उल्लंघन के कारण सील किया गया था। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में इच्छुक गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और निवासी कल्याण संघ को जोड़ा जाए ताकि स्थानीय स्तर पर बच्चों तक पहुंच बढ़ाई जा सके।

0: रेखा गुप्ता ने आयोग को राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली रसोइयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर कार्य योजना तय की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालयों में दुष्कर्म से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो जागरूकता अभियान को और व्यापक किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 से 14 वर्ष की बेटियों, विशेषकर वंचित वर्गों की बालिकाओं तक निःशुल्क HPV टीकाकरण की जानकारी और पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए साइबर अपराध जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और दुष्कर्म से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आयोग शिकायतों का समाधान देने के साथ महिलाओं तक सक्रिय रूप से पहुंचे और नारी सशक्तिकरण के मिशन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने वाली मजबूत व्यवस्था बने। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली पुलिस ने आज अवैध शराब तस्करी मामले में खजूरी खास क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 1050 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश होने के से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा, ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से भारत मंडपम में 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जनभागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित

0: आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के बीच सहयोग और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी वार्ता की। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। यमन में हौसी विद्रोही रणनीतिक बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे हैं। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार हौसी विद्रोही जलडमरू मध्य के पास स्थित तटीय शहर धुबाब और रणनीतिक पेरेम द्वीप तक पहुंच गए हैं। ये घटनाक्रम हौसी विद्रोहियों के लाल सागर स्थित मोखा बंदरगाह पर कब्जे की खबरों के बाद सामने आया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। वहीं जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "Today BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP and over 25% of global trade."
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
1: The Prime Minister called for Make in India, Innovate with India and Scale for the World. He said at a time when trade barriers are rising across the world, India is building economic bridges. Mr. Modi said global trade can move forward only when sea lanes are secure, supply routes remain open and seafarers are safe. In his address, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said that during India's chairship, BRICS has been driven by a clear purpose to achieve more balanced trade amongst member nations and to explore expansion of trade and services across the bloc. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin held bilateral talks at Bharat Mandapam.

फिल्म वो कौन थी से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आज इस गीत को सुन के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम किस राग की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राग पहाड़ी की। राग पहाड़ी भारतीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय और मधुर यानी धुन प्रधान राग है जिसकी उत्पत्ति हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों के लोक संगीत से हुई है। और इसका जो थाट है, बिलावल है, इसके सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध होते हैं। इसकी जाति औड़ संपूर्ण आरोह में इसे 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर माने जाते हैं।

0: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. Under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
3: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें

0: इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

फिल्म ताजमहल के इस गीत के साथ ही मधुरिमा की महफिल आज यहीं तक। संजीव अग्निहोत्री को भी दीजिए इजाजत। एफएम गोल्ड 100.1 आप सुनते रहें, यही हमारी आपसे गुजारिश है। अगली किसी शो में हम आपसे फिर से करेंगे।

नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में बज चुके हैं 8:30 और समय हो गया है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए सुखद होगा क्योंकि हम आपको सुनाएंगे कि कैसे चीन में भारत के युवा खिलाड़ियों ने मलेशिया की हेकड़े गुम की और दुबई की तपती गर्मी में कल शेफाली वर्मा ने कैसे बांग्लादेशी गेंदबाजों के छक्के छोड़ाए। इसके अलावा अमरीकी ओपन टेनिस का रोमांच और खेल मंत्रालय के कुछ बड़े फैसलों पर भी रहेगी नजर। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। भारत मलेशिया को 3-1 से हराकर जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। महिला टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत कल बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एलेना रायबकीना और आर्याना साबालेंका महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का गठन किया। 20 निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि जूनियर एशिया हॉकी कप से। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया

0: को 3-1 से हराया। पूरे मैच का हाल विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान अनमोल इक्का के 2 गोल की मदद से मौजूदा चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनमोल ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। इसके साथ ही पूरे टूर्नामेंट में अनमोल के 16 गोल हो गए हैं। गोलकीपर विवेक लाकड़ा ने भी एक पेनल्टी स्ट्रोक समेत कई शानदार बचाव करके भारत का दबदबा बनाए रखा। आज के पूरे मैच पर नजर डालें तो टीम ने आक्रामक शुरुआत की। अजीत यादव पहले 2 मिनट में 2 बार मलेशियाई सर्कल में घुसे। भारत को जल्दी ही 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले। हालांकि मलेशिया के गोलकीपर अमसियार मोहम्मद आदिब ने उन्हें गोल में बदलने नहीं दिया। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में मलेशिया गोल करने के करीब पहुंचा, पर भारतीय टीम ने उसका प्रयास नाकाम कर दिया। इस बीच भारत को 16वें मिनट में 4th पेनल्टी कॉर्नर मिला। कप्तान अनमोल ने इसे गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिलाई। मलेशिया को भी पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत ने उसके इस प्रयास को भी नाकाम कर दिया। भारतीय गोलकीपर लाकड़ा ने 34वें मिनट में गोल के 2 प्रयासों को नाकाम किया। 4th क्वार्टर में भारत के लिए सुखविंदर ने 2 गोल किया। भारत को 54वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर मलेशिया ने वीडियो रेफरल लिया, लेकिन वीडियो रेफरी ने मूल फैसला कायम रखा। अनमोल ने इस पर गोल करके भारत की बढ़त 3-0 की कर दी। आखिरी सीटी बजने से 24 मिनट पहले मलेशिया को 8वां पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे एम राहुल ने गोल में बदला। भारत की नजरें अब लगातार 4th और कुल 6 खिताब जीतने पर है। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। 2 सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 4-1 से पराजित किया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो क्या बात है, भारतीय युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखलाया है, तो जहां लड़के फाइनल में पहुंच चुके हैं, वहीं हमारी जूनियर महिला हॉकी टीम भी कहां पीछे रहने वाली थी। कल उनका सेमीफाइनल मुकाबला दक्षिण कोरिया से होना है। और आपको याद दिला दूं कि पिछले मैच में हमारी इन शेरनियों ने पाकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया था। पूजा मलिक ने तो गोलों की झड़ी लगाते हुए हैट्रिक ही बना डाली। तो हमारे तरफ से भी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं उस खेल की जो भारत के रग रग में बसता है, यानी कि क्रिकेट। भारत की महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। दुबई में कल पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। तो आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं कि शेफाली वर्मा की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत कैसे यह मैच भारत के पक्ष में हुआ।
2: India finishing things off in style. They haven't edged into the final. They have marched in. Ruthless without rushing. That is how India have taken this semi-final away.
3: सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के अर्धशतक की बदौलत 7 बार चैंपियन रह चुकी भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया और रविवार को होने वाले महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। शेफाली ने 7 चौके और 3 छक्के सहित 64 रन बनाए। कल के मैच में अन्य भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष भी शुरुआत में धीमी रही, लेकिन उन्होंने 16 गेंद में 21 रन बनाकर महत्वपूर्ण रन जोड़ने में सफलता हासिल की। वहीं प्रतिका रावल ने 20 रन का योगदान दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने पारी के अंत में 2 छक्के लगाए। पिच की परिस्थितियां भी काफी चुनौतीपूर्ण थी, बावजूद इसके शेफाली ने 40 गेंद की आक्रामक पारी की बदौलत टीम को 6 विकेट पर 149 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान शेफाली को 3 बार जीवन दान भी मिला, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। बांग्लादेश की टीम के लिए 150 रन के लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल रहा। टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी। उसके लिए शौर्ना अख्तर नाबाद 22 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रही। दिलारा अख्तर ने 21 और कप्तान निगार सुल्ताना ने 19 रन बनाए। भारत के लिए अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए, जबकि श्री चरणी और प्रेमा रावत को 1-1 सफलता हाथ लगी। भारत फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हो रहे 2 सेमीफाइनल की विजेता टीम से खेलेगा। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो श्रोताओं, सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रनों से हरा दिया भारत ने, लेकिन यह मैच इतना आसान नहीं था जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में सुना कि दुबई की पिच बड़ी टेढ़ी थी। तो फिर ये करिश्मा कैसे हुआ, हमारे सहयोगी मनोज ने इस दिलचस्प रिपोर्ट में बताया है। बांग्लादेश ने शेफाली को 3 बार जीवन दान दिया और शेफाली ने दिखा दिया कि क्रिकेट में कैच छोड़ोगे तो मैच तो छूटेगा ही। अब रविवार को

0: प्राप्त कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराया। इससे पहले बेलारूस की साबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। महिला डबल्स की बात करें तो फाइनल में आज रात कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड की चेक अमेरिकी जोड़ी का मुकाबला अमेरिका की रॉबिन मॉन्टगोमरी और एश्लीन क्रूगर से होगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला रूस के कारीन खाचानोव से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में दो अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब श्रोताओं, आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताते हैं। कहते हैं ना कि अपनी प्रतिभा को पहचान कर कोई भी अगर उस पर कड़ी मेहनत करता है और निखारने की कोशिश लगातार करता है तो एक ना एक दिन उसे बड़ी सफलता जरूर मिलती है। नवांग सेरिंग की कहानी कुछ ऐसी ही है। नवांग ने लद्दाख मैराथन जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। नवांग सेरिंग ने लद्दाख मैराथन में 122 किलोमीटर सिल्क रूट अल्ट्रा की दूरी को 12 घंटे 12 मिनट और 18 सेकंड में पूरा कर रिकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया। सेरिंग का यह पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में वह चैंपियन बनकर निकले हैं। नवांग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी कोचों, सहयोगियों और प्रशासन को दिया है। लद्दाख मैराथन जीतने के बाद उन्होंने युवाओं से क्या अपील की, आइए सुनते हैं।
1: अपना टैलेंट वेस्ट मत कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग रनिंग करो, एक अच्छा सा टैलेंट होता है, यह तो चीज का टैलेंट होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना हुनर दिखिए और आगे बढ़िए।
0: तो नवांग की यह सफलता निश्चित रूप से उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अभावों के बीच बड़ी उपलब्धि हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो खेल के मैदान से अब बाहर निकलते हैं और खेल के दफ्तरों से की तरफ चलते हैं, जहां से कुछ बड़ी खबरें हैं आ रही हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों में साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए एक 20 सदस्यीय राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल यानी कि NSEP का गठन किया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें देश के दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल है, ताकि चुनावी अंपायरिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। इस साल भारतीय ओलंपिक संघ और फुटबॉल महासंघ के बड़े चुनाव होने हैं, जिन पर इस पैनल की कड़ी नजर होगी। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के लिए खेल मंत्रालय से एक अच्छी और राहत भरी खबर आई है। मंत्रालय ने विशेष छूट देते हुए IOA को अपनी 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को वैसे ही जारी रखने की अनुमति दे दी है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति चाहती थी। फिलहाल संघ की कार्यकारी परिषद 16 सदस्य हैं। परिषद में 16 सदस्य हैं, जिनमें भारत में IOC के पदेन सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अपने कामकाज के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय और चार्टर और नियमों का मुख्य रूप से पालन करना होगा। अब चलते हैं दिल्ली के हमारे नन्हे और युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही प्यारी और मददगार खबर की तरफ। अगर आप दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में रोज पसीने बहा रहे हैं तो दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत अब जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि पैसों की कमी खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के आड़े ना आए और सचमुच यह ग्राउंड लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन और सराहनीय कदम है। दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी, जहां दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रास रूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंट शुरू करने की मंजूरी दी। इस नई पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटरों और स्टेडियमों में नियमित रूप से ट्रेनिंग लेने वाले योग्य युवा खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, और इसका उद्देश्य उन आर्थिक बाधाओं को दूर करना है जो ट्रेनिंग में रुकावट डाल सकती है, और यह पक्का करना है कि युवा खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से ही लगातार ट्रेनिंग मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई सहायता योजना मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की पहुंच को जमीनी स्तर तक बढ़ाती है। नई व्यवस्था के तहत हर सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित रूप से एनरोल किए गए ट्रेनीज में 25% तक को सहायता दी जाएगी। आमतौर पर किसी एक स्टेडियम में सेंटर में ज्यादा से ज्यादा 100 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ज्यादा ट्रेनिंग

0: फीस वाले बड़े स्टेडियमों में बजट की उपलब्धता के आधार पर यह सीमा 150 खिलाड़ियों तक बढ़ाई जा सकती है। इस योजना में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। लाभार्थियों का चयन खेल में प्रदर्शन और क्षमता, नियमित उपस्थिति और अनुशासन और आर्थिक जरूरत के आधार पर किया जाएगा। योग्य खिलाड़ियों को तय शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें एनरोलमेंट को और कम से कम 80% उपस्थिति शामिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाभार्थियों के चयन के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी, जिसमें हर तिमाही उनके प्रदर्शन, उपस्थिति और अनुशासन की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली से एक और खबर है कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA ने 2025-26 सीजन के लिए क्लबों और खिलाड़ियों को कुल 1,43,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी है। एसोसिएशन ने इस बार सभी कैटेगरी में पुरस्कार राशि में 10% की बढ़ोतरी की है। ये पुरस्कार गुरुवार को यानी कि कल अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित सालाना पुरस्कार वितरण समारोह में दिए गए। रोहन जेटली ने क्या कहा कि DDCA दिल्ली में क्रिकेट को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
1: ये एक बड़ा एनुअल फीचर है जिसमें हमारे कोई 1800 प्लस मैचेस होते हैं दिल्ली शहर में क्लब लेवल पे। नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है हॉट वेदर टूर्नामेंट, जिसकी विनिंग अमाउंट इज अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। क्लोज टू अराउंड 2.5 crores इज गिवन आउट एज प्राइज मनी टू अपकमिंग क्रिकेटर्स। और बच्चों में टैलेंट है, जितने बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको यहाँ पे एक्नॉलेज करा जाता है, उनका सम्मान करा जाता है। और विनिंग क्लब्स की थ्रू आउट द ईयर कमिटेड परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन की केवल एक एक्नॉलेजमेंट है।
0: तो श्रोताओं, आज के स्पोर्ट्स स्कैन में खेल की दुनिया की हलचल बस यहीं तक। आपको क्या लगता है, क्या संडे को हमारी महिला क्रिकेट टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों एशिया कप का खिताब घर ला पाएंगी? अपनी राय हमें आप जरूर बताइएगा। अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल sportsscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडबरू मध्यम स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हाउसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हाउसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक

0: सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi, discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India since the 9th of this month till today and underscored its importance in further expanding trade and industrial ties. The two leaders also visited the InnoProm India exhibition and interacted with the participants. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar during the

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर

सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबाओ सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाबल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: More than 40% of the world's GDP has been produced by the BRICS countries. He said BRICS countries account for more than half of the world's population, and that is why they have a great dynamic, vibrant domestic markets. Iranian President Masoud Pezeshkian suggested that one of the most important steps is to expand the use of national currencies in trade among the members. He said this step must be accompanied by the establishment of the necessary instruments for managing currency risks and reciprocal settlements. The stage is all set for the 18th BRICS summit to be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. During the summit, Prime Minister Narendra Modi will play host to the world leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran's President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim arrived in New Delhi to attend the BRICS summit. Deputy Prime Minister of Russia Alexei Ovchuk, President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali are among several dignitaries who have arrived for the summit. President of ASSOCHAM Nirmal K. Minda said that Prime Minister's vision of transforming BRICS cooperation into concrete business outcomes is highly significant. He added that deepening trade, investment, technology, startup and business partnerships among BRIC economies can unlock enormous opportunities and create new avenues for inclusive and sustainable growth. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर से कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में तेज गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण म्यून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने आज राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्षों सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयासों में संलग्न रहने पर सहमति व्यक्त की। यह साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कर रही है और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलापन दिखा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इस रुख को दोहराया है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

0: प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ब्रिक्स से संबंधित बैठकों में ईरान की नियमित और उच्च स्तरीय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज शाम ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश आज दुनिया की 50% आबादी, करीब 40% वैश्विक GDP और 25% से अधिक वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में जहां वैश्विक GDP तेजी से बढ़ रही है, वहीं विकास भी हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। श्री मोदी ने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि विनिर्माण प्रौद्योगिकी और मूल्य सृजन में विकासशील देशों को नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने एकतरफा प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुझाव दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का विस्तार करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया।

0: किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 4-1 से पराजित किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरे वरीयता प्राप्त एलेना रायबकीना ने महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में एलेना ने चौथी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराया। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना का सामना मौजूदा चैंपियन और अरियाना सबलंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की सबलंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला रूस के कारेन खाचानोव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर से कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बॉब अलमंडेल जंडबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण द्वीप पर कब्जा किया। इसके साथ ही इस विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defence, energy, regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayu Island in Bab al-Mandab Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enters final of Asia Cup, defeating Malaysia at Mochi in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defence, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts, and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding freedom of navigation and commerce, and safety and well-being of seafarers. Mr. Modi thanked Iran for its regular high-level participation in BRICS-related meetings despite the challenging circumstances. The Prime Minister also held a bilateral meeting with UN Secretary General Antonio Guterres on the sidelines of the BRICS Summit 2026. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centres of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said the economic strength of BRICS has grown at nearly twice the pace of the rest of the world. The Prime Minister said amid global uncertainties, India today offers a source of confidence for growth and stability. He called

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हाँ, दिलों की साज से सजा आपका अपना हर सिंगार लेकर आज स्टूडियो से साथ हूँ मैं एक बार फिर आपकी दोस्त रोहिणी। मेरी दुआ सलाम दोस्तों आप तक पहुंचती है इन प्यारे से ख्यालातों के साथ कि दिलों पर करना हो राज तो नहीं जरूरत ताज की, रखिए बस एक लाजवाब अंदाज और सादगी भरा साथ। कुछ ऐसे ही अंदाज लिए आज गीत मेरे मनमीत का सफर तय करेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ श्रोताओं, आइए आगाज करते हैं आज के हर श्रृंगार का इस प्यारे से गीत के साथ जो कि है एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से आशा जी और मुकेश जी की आवाज में। साथ ही आपको बता दें कि इस गीत को लिखा है SH बिहारी जी ने और संगीत से सजाया है ओपी नैयर साहब ने। ये प्यारा अंदाज आप

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर सिंगार। और दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की जो परीक्षा होती है ना, बड़ी वफादार होती है, पेपर का एक क्वेश्चन तक पता नहीं चलने देती है। जी, शायद इसीलिए समझदार शख्सियतें ख्वाहिशों के मोहल्ले से मुड़कर जरूरतों के गलियारों में मुड़ जाया करती हैं। यही हकीकत है और शायद यही सच्चाई। आइए सुने अगला गीत रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। जी हाँ, जिसे गुनगुनाया है लता जी और किशोर जी ने, और इस गीत को अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने।

दोस्तों, अगर कभी सोचोगे तो पाओगे कि जिंदगी एक किताब है, हर रोज एक नया पन्ना, कभी हंसी कभी आंसू, यही है इसका ढंग पुराना। जो समझ सके इसे वो खुश रहते हैं, बाकी सब थोड़े उलझे उलझे रहते हैं। यहाँ जिंदगी के अनुभव रंगों के इस रंग में रंगी ये जिंदगी की जो किताब है, इसको पढ़ते रहिए अनुभवों के साथ। फिलहाल आइए सुनते हैं एक और गीत, राखी और हथकड़ी फिल्म से ये गीत है, आशा जी और किशोर जी की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया आटी पवन।

0: ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार। और कहते हैं कि हर दशक अपना एक अलग अंदाज रखता है, अपना एक प्यारा अंदाज रखता है। ये भी 90 के दशक का वो अंदाज था जिसे लिखा था समीर साहब ने और संगीत से सजाया था नदीम श्रवण जी ने। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे आंदोलन फिल्म से। 101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर सिंगार। और श्रोताओं कहते हैं कि जीवन में कई बार बड़े गजब होते हैं, लेकिन जीवन जीने की किरण जो होती है ना, वो हमारा हौसला बनाए रखती है हमें आगे बढ़ने के लिए। वो कहते हैं ना, अंधेरों में भी उम्मीद की किरण होती है, जो दिल में हो वो तो रास्ता दिखा ही देती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हौसला, ऐसा ही सफर आप तय करते रहें, इसी उम्मीद के साथ आज के हर श्रृंगार को समेटने की यहीं पर आपसे लेती हूँ इजाजत, इस उम्मीद और इस वादे के साथ कि आप के साथ जुड़ी रहूंगी और आपसे गुजारिश यही करेंगे कि आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। श्रोताओं आइए सुनते हैं ये प्यारा गाना। आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गीत है, आरडी बर्मन साहब का संगीत और लव स्टोरी फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे आशा जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं

रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Subodh Mishra.
1: Namaskar, shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: पहले हेडलाइंस अनुभा रोहतगी से.
0: थैंक यू सुबोध. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस लीडर्स सेशन ऑफ ब्रिक्स बिजनेस फोरम, सेज ब्रिक्स नेशंस आर इमर्जिंग एज की हब्स फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस. Benchmark domestic indices decline, Sensex falls 121 points, Nifty settles below 23,400. And global oil supply and demand to further contract this year, says International Energy Agency.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स के सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 121 अंक गिरा, निफ्टी 23,400 के नीचे पहुंचा. और IEA ने कहा, इस साल कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति और मांग में और कमी आएगी.

0: energy security. So under these circumstances, if you are able to grow at a pace at which we are growing, this definitely shows the resilience, inherent resilience of our economy.
1: And before we move forward, let's listen into what the Prime Minister said during the business forum meeting today.
2: Economic strength दुनिया की तुलना में करीब दो गुनी रफ्तार से बढ़ी है. ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स में बन रहे हैं. ग्रास रूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं. ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है. भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है.
1: Earlier today, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Dr. Jaishankar was addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning ahead of the two-day 18th BRICS Summit beginning tomorrow. He noted that digital public infrastructure, artificial intelligence, fintech and advanced manufacturing offer major opportunities, but also raise questions relating to access, standards, security and trust.
3: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
1: Addressing the opening session of the forum, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth and prosperity for their people.
4: Friends, BRICS today represents almost one-fourth of global trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured exports. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
5: Ji. प्रकाश जी, अभी हमने बातें सुनी डॉक्टर एस जयशंकर की और पीयूष गोयल जी की. जैसा कि अभी हमारे एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत को दृढ़ता अभी दिखानी होगी हमें, एक्चुअली हर देश को दिखानी होगी ब्रिक्स में, और उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जो संवहनीयता पर, सस्टेनेबिलिटी पर. और इसके अलावा अगर हम देखें आगे जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, तो ये बातें अभी कुल मिलाकर क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स देशों को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगी?
0: देखिए जी, दोनों मंत्री महोदय की बात को अगर मिला दिया जाए तो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी के अलावा पीयूष गोयल जी ने बड़ी अहम बात ये की है कि मार्केट जो है विद इन द ब्रिक्स, जहाँ 40% जीडीपी है, विद इन द ब्रिक्स अगर हम मार्केट्स और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं और ज्यादा एक्सेस दें एक दूसरे को, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लुकिंग बियॉन्ड अमेरिका, लुकिंग बियॉन्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. वो जो है ना फर्दर, बिकॉज देन अगर आपको डाइवर्सिफाई तो करना होगा, और हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप विद इन ब्रिक्स में ट्रेड को बढ़ाइए, एक्सेस दीजिए एक दूसरे को, कंट्री टू कंट्री करेंसी का वो यूज कीजिए एक दूसरे का.
1: Yeah, that is exactly the point I want to make, you know, Mr. Chawla, because Piyush Goyal did say, the minister did, you know, he called upon the BRICS members to, you know, link the India's payment systems to their systems, as well as he urged the countries to trade in each other's local currencies, make digital trade global and build together for the future emerging technologies. How important is this, especially

0: This emphasis on, you know, strengthening the digital payment system of the various countries and linking it, because there's always been this talk of de-dollarization has been, you know, one of the things in BRICS.
1: Well, the talk of de-dollarization offends a few people.
0: Yes.
1: Few countries in the world. So without that, without de-dollarization, because that could be an issue, without that, the country to country trade,
0: yes,
1: in local currency is very important step as suggested by Mr. Piyush Goyal, and that I think we expect the way forward, some movement right during this summit.
0: Right.
2: जी, और ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति समर्थन दोहराया। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रकाश जी, हम वित्त मंत्रियों की बात भी हमने सुनी जो कल बात हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने भी कहा है, और सबने वही जो आप पहले कह रहे थे, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
1: नहीं, बहुत सही बात है। बहुत बड़ी चिंता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको एक खतरा हो रखा है आजकल में, जब टैरिफ को हमने एक तरह वेपन बना दिया है काफी मुल्कों ने, और खासतौर पे खास एक देश ने अपना वेपन बना लिया है, और वो वेपनाइजेशन जो टैरिफ को आप करते हैं तो पूरे संसार में उसका असर पड़ता है, और मल्टीलेटरलिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये जो चिंता जाहिर की गई है ये बड़ी ही वाजिब चिंता है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है।
2: जी, और चलिए अब नजर डालते हैं हम अब आज शेयर बाजारों का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74,782 पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक नीचे 23,398 पर आ गया। एनएसई का मिड कैप 100 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की गिरावट आई। आज कारोबार की शुरुआत में सूचकांक काफी गिरावट के साथ खुले थे। कच्चे तेल की तेज कीमतों और निवेशकों की सावधानी का असर बाजार पर दिखाई दिया। आखिरी घंटे में सूचकांक अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर तो आए, लेकिन नुकसान में ही बंद हुए।
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 121 points to close at 74,782. The Nifty dropped 80 points to settle at 23,398. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index declined 0.3% and the Small-Cap 100 index dipped 0.6%. Earlier, the markets opened with a gap down and traded with losses, weighed down by elevated crude oil prices and cautious investor sentiment. However, the indices spared initial losses during the final hour, supported by value buying and decline in oil prices.
2: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें, टाटा स्टील में 1.7%, रिलायंस में 1.3% और सन फार्मा में 1.2% की गिरावट रही। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में HDFC बैंक में 2%, टेक महिंद्रा में 1.4% और HCL टेक में 0.8% से अधिक की बढ़त देखी गई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द BSE, 20 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड डाउनवर्ड। अमंग द अंडर परफॉर्मर्स, रियलिटी लॉस्ट 2.7%, metal dropped 2.4% and commodities fell 1.6%. In contrast, telecommunication advanced 1%, private banks gained 0.5% and IT added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, shares of 1,854 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
2: जी प्रकाश जी, बाजार का हाल हमने बता दिया।

0: डेंगू में आज काफी गिरावट थी, थोड़ा बीच में लगभग फ्लैट होने की हालत तक फिर बढ़ा था, लेकिन अंत में फिर 121 अंक सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी 80 अंक नीचे आ गया है। इसको देखें और इसके साथ पूरे पूंजी बाजार को अगर हम देखें, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉन्ड मार्केट की क्या हालत है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से जो पैसे का मूवमेंट है किन बाजारों से निकल रहा है और कहां जा रहा है, जापान अपने पैसे वापस ले रहा है, क्या इन सब का एक सस्टेन्ड असर अब दुनिया के बाजारों पर दिखाई देना शुरू होगा?
1: नहीं, पूरी पूरे बाजार में, पहले आज की बात करते हैं।
0: जी आज,
1: आज
0: जी।
1: सुबह तो बुरा हाल था
0: जी,
1: फिर रिकवरी आई, बड़ी अच्छी रिकवरी आई। अब रिकवरी जो आई वो इस तरह से नहीं आई कि जैसे संकट दूर हो गया। रिकवरी इसको ट्रेड पार्लर्स में, टेक्निकल ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लोग जब पैनिक हुआ सुबह तो ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग काफी धड़ल्ले से की। जब धड़ल्ले से शॉर्ट सेलिंग हुई तो शॉर्ट सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश की गई, इसलिए स्मार्ट रिकवरी आई। और ये एक ट्रेड काइंड ऑफ है, वो है, लेकिन इससे ये नहीं कि दुनिया की चिंता दूर हो गई।
0: ये दैनिक, ये तो आज का था,
1: आज का था। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो लेटेस्ट था कि जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है और बदतर हो गई। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत थी, अब रेड सी में दिक्कत होने लगी। तब दोनों चैनल आपके ट्रेड बंद हो जाएगा, शिपिंग रूट्स बंद आएंगे, और जाहिर बात है उसका असर हमको तेल की मार्केट में मिला। क्रूड ऑयल जो 110 तक पहुंचा, फिर वापस रिकवरी हुई, तो ये उतनी उथल पुथल में मार्केट का इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है। तो अब आपने कहा कि कारण क्या है, एक कारण तो मिडल ईस्ट है, दूसरा कारण आपने कहा बॉन्ड यील्ड का। अब बॉन्ड यील्ड जो है एक अपने आप में जेम्स बॉन्ड बन गया है तो वो एक अपने आप में एक खतरा है। वो क्या दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स का, मतलब आम आदमी की भाषा में बोला जाए ये दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में तो काफी ज्यादा तेजी है, ये दर्शाता है आम भाषा में कि इन्फ्लेशन का जो डर है लार्जली अराइजिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड और बाकी चीजों से, इन्फ्लेशन का जो खतरा है बड़ा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और उसके कारण मिडल ईस्ट भी है, उसका कारण पूरे जो संसार में खासतौर पर अमेरिका में जो उनका डेट है, उनका उधार है $40 trillion, वो अनसस्टेनेबल कोशिश की जा रही है। वहां के जो फाइनेंस मंत्री हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं इसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, लेकिन री इंजीनियरिंग जो है वो एक बैंडेड होती है, उससे काम नहीं चलता
0: जी। लेकिन क्या आने वाले समय में हम पूंजी बाजार में एक रीबैलेंसिंग देखेंगे?
1: रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जो मैंने आपको समझाया, तो जो कैपिटल तो वहीं जाता है जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, जब कमाई ज़्यादा होती है। तो इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है, बॉन्ड यील्ड में आपको फिक्स इनकम मिलती है। आपको अगर अमेरिका में 5-5.5% मिल जाता है, 5% मिल जाता है, और देन अगर आपके एमर्जिंग इकोनॉमीज में थोड़ी दिक्कत होती कि उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन का या करेंसी फ्लक्चुएशन का फैक्टर इन करना पड़ता है, तो सेफ्टी की तरफ कैपिटल पूंजी घूम जाती है, और वो जो है उसका असर जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इतना अच्छा नहीं पड़ता
0: जी। और देखें रुपए का हाल, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 10 पैसे गिरकर 95.55 रुपए पर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज लगभग 1.8% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 1.9% से ज्यादा गिरा।
2: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस
0: फेल से पहले मुझे लगता है क्रूड के संबंध में अभी और भी काफी कुछ खबरें हैं अनुभव जो प्रकाश जी से हमें चर्चा करनी चाहिए। कि अभी जैसा कह रहे थे हम, पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालने वाला एक सबसे बड़ा कारक यह है कि सप्लाईज, हमारे क्रूड की सप्लाई कैसे होगी, कहां से होगी, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और आईईए ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह भी है कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में रोजाना 57 लाख बैरल की गिरावट आने की आशंका है। मतलब इससे फिर अब डेली जो सप्लाई है वो 10.7 करोड़ बैरल प्रतिदिन हो जाएगा वो डेली सप्लाई।
1: आईईए ने तो एक अपनी रिपोर्ट जारी किया, नंबर दिया है, बट ये जो आशंका है ये कोई, इसलिए कोई अंग्रेजी बोलते हैं नो ब्रेनर
2: जी,
1: तो नो ब्रेनर है

0: है ही, दिखाई दे ही रहा है।
1: तो वो उन्होंने देख नंबर देके आपको स्टैंप लगा दिया, तो वो तो एक है, गिवन है। तो अब उसमें इसके फिर सवाल ये है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि वार जो है, जब 6 महीने से ज्यादा हो गए वार को मिडिल ईस्ट में, उधर से यूक्रेन रशिया को जो है उसमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, तो ऐसी शंका जताई जा रही है और ऐसा डर है और ऐसा वो है कि भाई आर्मी ने सिचुएशन कि भाई जहां पे अंग्रेजी बोलते हैं फॉर एवर वॉर
2: जी,
1: जब ऐसी सिचुएशन में तो मुल्कों को, अपने अपने देशों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जाए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए जाएं, क्लीन फ्यूल की तरफ, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ के लिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट।
0: इसके साथ साथ ये अनुमान भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 25 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी आएगी, जो कि पहले के 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट के पूर्वानुमान से थोड़ी ज्यादा है। तो अब दोनों श्रिंक होने की बात हो रही कि शायद मांग में भी गिरावट, अब
1: उसका मुझे अंदेशा है क्योंकि डिमांड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आ रहा है, उसका मुझे थोड़ा अंदेशा है
2: जी। And let's get back to the commodity prices. Like I was saying earlier, global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 3.2% down at $104.15 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. West Texas Intermediate crude was trading 3.2% down at $99.17 per barrel.
0: और भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% गिरकर 1,51,938 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,28,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज अनुभव वक्त इतना ही है, खबरें तो और भी बहुत कहे हैं, लेकिन अब चलते हैं प्रकाशी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses leaders' session of BRICS Business Forum, says BRICS nations are emerging as key hubs for global innovation and solutions. Benchmark domestic indices declined, Sensex falls 121 points, Nifty settles below 23,400, and global oil supply and demand to further contract this year, says International Energy Agency. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मन मीत को प्यारे साजों से सजाकर आज प्रोग्राम में साथ हूं मैं रोहिणी। दिल के ख्यालात से दूरियों को बयां करने के अल्फाज तो निराले हैं, लेकिन कहते हैं दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, और नजदीकियां बेकार हैं अगर जगह दिल में ना हो। ये अनुभव गीत के अंदाज से भी आइए आप तक पहुंचाते हैं। आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का जो कि दुनिया फिल्म से है, और इस गीत को आवाज दी है किशोर जी और आशा जी ने। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, इन दूरियों में, नज़दीकियों में कभी कभी आप सोचते हैं कि बस खामोशी ही सब कुछ बयां कर जाए। हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्त। जब बोलते हैं तो असर होता है और जब चुप रहते हैं तो भी बात होती है। अगला गीत आप सुन रहे हैं फासले फिल्म से लता जी की और किशोर जी की आवाज़ में। इस गीत को अल्फाज दिए हैं शहरयार ने और संगीतबद्ध किया है शिव हरी जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत का ये दिलकश अंदाज आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ रोहिणी। और जी हाँ, समय जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि आज के गीत मेरे मन मीत को यहीं समेटने की आपसे लूं इजाज़त। और वो कहते हैं ना, बड़े प्यारे अल्फाज हैं, शबे इंतज़ार।

यार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। जी श्रोताओं, तो फिलहाल आपसे गुजारिश यही करते हैं कि सुनते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। ये आज के गीत मेरे मनमीत का आखिरी गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो कि है अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से। इस गीत को गुनगुनाया है मुकेश साहब ने और अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, और अपने संगीत के प्यारे अंदाज से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए श्रोताओं, फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत शुभ रात्रि के साथ, और इस आशा के साथ कि आप जीवन के सफर में यूं ही आगे बढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते और जिंदगी के रंगों में अपने अनुभव को लेते हुए। फिलहाल सुनते हैं ये गीत 100.1 MHz पर, ये प्यारा अंदाज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरेश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमिल भाषा की शास्त्रीय और कालजयी ज्ञान कृति तिरुकुलर का रूसी अनुवाद सौंपे जाने की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोलिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी

टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। निशिगंधा लेकर माधुरी है आज आप सभी के साथ। नमस्कार। इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। इंतज़ार कह लीजिए, बाट जोहना कह लीजिए, राह देखना, आस लगाना, उम्मीद रखना या फिर किसी का आसरा देखना कह लीजिए, किसी भी तरह से इस इंतज़ार को आप बयां कर सकते हैं। और आज निशिगंधा में हम इसी इंतज़ार को लेकर आए हैं। इंतज़ार सिर्फ वक्त का गुजर जाना नहीं है, ये वक्त को महसूस करना है। घड़ी की सुई रोज चलती है, पर जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तब हर सेकेंड और लंबा हो जाता है। इंतज़ार में एक अजीब कशिश है, एक सुकून भी है, एक अजीब सा दर्द भी है।

खामोशी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप हेमंत कुमार की आवाज में। बात इंतजार की। इंतजार के भी अलग अलग रूप हैं, प्रकार हैं। बचपन में जब शाम होती तो बच्चे को इंतजार रहता है ऑफिस से लौट रहे उसके पिता का, और समय बदला, माँ भी ऑफिस जाने लगी और माँ का भी उसी तरह इंतजार होने लगा, और साथ साथ उन मजे मजे की चीजों का इंतजार जो माता पिता लाने वाले होते हैं। लेकिन वही इंतजार जवानी की दहलीज पर अलग रंग ले लेता है। इंतजार हो जाता है महबूब की एक झलक का, उसके भेज

आने वाले संदेशों का इंतजार। इसी तरह हर उम्र में, हर दौर में, हर चीज का अलग एक इंतजार होता है, और हम किसका रास्ता देख रहे हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे गीत फिल्म डॉन से लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में। आज निशिगंधा में हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है इंतजार। हम सभी को किसी ना किसी का इंतजार होता है, किसी के काम बनने का इंतजार होता है, कहीं जाने का इंतजार होता है, कुछ पाने का इंतजार होता है। किसान को बारिश का इंतजार होता है, छत पर गीले कपड़ों को

धूप का इंतजार होता है, कोई गांव लौटने के इंतजार में है, किसी को परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार है, पकी फसलों को कटाई का इंतजार है, सब अपने अपने उम्मीद के इंतजार में होते हैं। अभी आपको भी इंतजार है अगले गीत का, हमें मालूम है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला गीत।

इंतज़ार पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म शराबी से आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इंतज़ार करना आसान नहीं है, ये सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस उम्मीद को जकड़कर पकड़कर बैठे रहते हैं। इसीलिए ये बेचैन भी करता है हमें, रात भर नींद नहीं आती, बार बार दरवाजे की तरफ देखा जाता है, फोन चेक किया जाता है, लेकिन इसी बेचैनी में दिल जिंदा रहता है। जिसका इंतजार खत्म हो जाए उसकी कहानी भी शायद खत्म हो जाती है, और आंखों में इंतजार ही हमें दूर तक देखते रहने को मजबूर करती है, आशावान रखती है हमें।

0: है।
1: इंतजार दर्द तो देता है, तकलीफ तो देता है, पर हमें बेहतर भी बनाता है। कैसे? ऐसे कि जो इंतजार करना जानता है वो सब्र करना जानता है, वही रिश्ते निभाना भी जानता है। उसे रिश्तों की कद्र आती है, वो रिश्तों की कद्र करना समझता है और जानता है। जो चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है इस पर कि ये इंतज़ार की घड़ियाँ, ये शब का सन्नाटा, इस एक शब में भरे हैं हजार साल के दिन।

ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म विजयपथ से, आवाजें साधना सरगम और साथियों की। आज का दौर जो है वो कुछ अलग है, सब कुछ हमें जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट मैसेजेस हम भेजते हैं, इंस्टेंट हमें डिलीवरीज चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं हम। और इस जल्दबाजी ने हमसे इंतज़ार का सुकून छीन लिया है। अगर आप आज का इंतज़ार कर रहे हैं या आप किसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो घबराइए मत, ये वक्त जो है ना खाली नहीं जा रहा है। ये वक्त आपको सिखा रहा है, आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि इंतज़ार का फल हमेशा मीठा ही नहीं होता, गहरा भी होता है।

0: इसी के साथ निशिगंधे का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना।

0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को यथासंभव सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यालय का मंत्री की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत सुहाने लेकर माधुरी है आप सभी के साथ। एक बार फिर नमस्कार, और चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जिसमें हम सुनते हैं सुहाने पुराने गीतों को।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गीत आप तक पहुंचा फिल्म मेरे सनम से, ओपी नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरे के बोल। और जब भी प्यार की बात होती है तो बड़ी खूबसूरत बात होती है। किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद मत करना, बस उसके होने से तुम्हारे भीतर जो खुशी खिली है उसे उसी तरह खिलने देना।

नैना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप, आवाज मोहम्मद रफी साहब की और संगीत शंकर जयकिशन का। बात हो रही थी प्रेम की, किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद मत करना, बस उसके होने से तुम्हारे भीतर जो खुशी खिली है उसे उसी तरह खिलने देना, क्योंकि हर प्रेम का मुकाम मिलन नहीं होता। कुछ प्रेम केवल इसलिए आते हैं कि वे हमारे भीतर की कठोरता को पिघलाकर हमें थोड़ा और सुंदर बना सकें। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन में प्रेम का एहसास छोड़ जाए तो उसे पाने की नहीं, उस एहसास के लिए धन्यवाद देना उसका कि उसने आपको ये कला दी। क्योंकि कुछ लोग हमारे होकर नहीं, हमें प्रेम करना सिखाकर हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आपकी परछाइयाँ से, मदन मोहन का संगीत। और बात आगे क्या बढ़ाएं, कुछ तो खास होता होगा ना कुछ लोगों में कि उनसे बात किए करसा बीत जाता है, मगर हमारी खामोशियों में आज भी वही सुनाई देते हैं। होता है ना ऐसा आपके साथ भी?

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्यारे प्यारे गीत यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए गीत सुहाने के इस सफर में। एक बड़ी ही अच्छी हम बात कर रहे थे कि कुछ खास ही होता है कुछ लोगों में कि अरसा भी बीत जाए तो जो उनकी खामोशियाँ होती हैं वो हमें सुनाई देती हैं, ना कोई संदेश, ना कोई मुलाकात, ना कोई खबर उनकी, फिर भी न जाने कैसे हर बात के पीछे उनका जिक्र आ ही जाता है। शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं, हमारे भीतर बस जाने के लिए आते हैं और सच में

भाई इतना सोने की जिद पकड़ के इस गीत में बैठ गए हैं कि सचमुच मुझे भी यहाँ बैठे बैठे अब नींद आ रही है। लेकिन जो इन गीतों की मधुरता है ना, ये सोने भी कहाँ दे रही है। ये गीत सुन रहे थे आप येसुदास की आवाज में फिल्म आलाप से। क्या हुआ है कि तुम उदास हो, क्या हुआ है कि तुम उदास हो, क्या फिर तुम्हें सुना नहीं गया, क्या टूट गया है कुछ अंदर तक, क्या पिघल रहा है तुम्हारे अंदर कुछ, ये भय है, पश्चाताप है या सूनापन है, क्या हुआ है कि तुम उदास हो।

फिल्म साथी से ये गीत सुन रहे थे आप मुकेश की आवाज में नौशाद के संगीत के साथ। वक्त का काम ही है आगे बढ़ते रहना और हमें वक्त के साथ चलना है। संसार कहता है प्रेम पागल कर देता है, किंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे समझदार कर दिया। अब मैं तुम्हें खोजने नहीं निकलता किसी गली किसी पते किसी शहर में, क्योंकि समझ गया हूं जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है।

कुछ भी नहीं। लता जी की आवाज में अनुपमा फिल्म से गीत सुन रहे थे आप। सच ही कहा है कि जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है। अब मैं बाहर नहीं अपने भीतर उतरता हूँ, अपने मन की तहों को टटोलता हूँ, जहाँ तुम्हारी याद अब भी किसी शांत दीपक की तरह जलती है। तुम मिले या नहीं ये प्रश्न अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि किसी को पाने से बड़ा है उसके प्रेम में स्वयं को पा लेना।

लता जी की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बहारों के सपने से, और गीत सुहाने का ये सफर अब बस अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये आखिरी गीत सुहाने से आप सभी के लिए फिल्म झील के उस पार से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ

0: ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों में यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा योजना पहले से निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब ये जो सफर है ये है रात सुरमई, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। नमस्कार।
1: आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता।

हर कदम जिंदगी ने आजमाया मुझे, तन्हाइयों ने हर मोड़ पर बुलाया मुझे, मंजिल के तलाश में निकला था एक राही, न जाने किस सफर ने अपना बनाया मुझे।

याद दिला दें आपको कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:33 और हो गए हैं पूरे 53 सेकेंड। ये सफर है रात सुरमई का, जिसमें आज मैं हूं माधुरी आप सभी के साथ। बात करते हैं ख्याल की। ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे।

ख्वाब से निकलकर अब चलते हैं एक लंबे सफर पर। पलट आता हूं मैं मायूस होकर उन मकामों से जहां से सिलसिला नजदीक तर होता है मंजिल का, और इस सफर में और आगे तक हमें जाना है। और सफर की बात जब होती है तो मंजिल भी दिखती है। कई बार हम ऐसे सफर पर भी चल पड़ते हैं जहां मंजिल बहुत दूर होती है। मुसाफिर तेरा जिक्र करते रहे, महकता रहा रास्ता देर तलक।

बिल्कुल, मुसाफिर को घर ही आना है और बहुत दूर चलते चलते थक गए हैं और हमें भी अब घर जाना है। तो रात सुरमई का ये आखिरी नगमा आप सभी के लिए, इसके साथ ही इजाजत दीजिए माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्यों देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। कांगो के पूर्वी हिस्से में आरंभ हुआ जानलेवा संक्रामक रोग इबोला अब इस अफ्रीकी देश के 7 प्रांतों में फैल गया है। यह इस बीमारी का अब तक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता प्रकोप है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनुमोलिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during their meeting. During his bilateral meeting with the Iranian president,

हमारे दोस्तों ने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल, और इस चैनल पर मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत गीतों के साथ स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

वाला कोई अपना ही होना चाहिए। दो गलियां फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत रवि का। अगला गीत आप सुनेंगे चोर मचाए शोर फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना है और रविंद्र जैन की बनाई हुई धुन।

दोस्तों अगला गीत कह रहा है कि प्यार करने वाला अगर दिल पर नाम लिख रहा है तो उसने लिखने देना चाहिए।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत था आराधना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

अपना देश फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और आर डी बर्मन की बनाई हुई धुन थी। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ इश्क पर जोर नहीं फिल्म से। आनंद बख्शी का गीत है और सचिन देव बर्मन का संगीत।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे आदमी और इंसान फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिल लुधियानवी की रचना है और रवि की बनाई धुन।

0: आजादी हो।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई। कल आज और कल ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। नीरज का लिखा गीत था और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे दीवार फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है। साहिल लुधियानवी ने गीत की रचना की है और आरडी बर्मन के बनाई हुई धुन।
1: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है?

दोस्तों अब अगला पड़ाव आ गया है, यानी हमराही कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव। खेल खेल में फिल्म से गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, गुलशन बावरा की रचना और डी बर्मन का संगीत।

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हट जाए।

0: और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हमरा ही अब संपन्न होता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश

0: भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने देश की एक प्रमुख तेल पाइपलाइन एहतियातन बंद कर दी है। यह पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन में हौसी विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इससे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के जरिए सऊदी अरब के तेल निर्यात पर खतरा उत्पन्न हो गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट में कल दुबई में भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during their meeting. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding freedom of navigation and commerce, and the safety and well-being of seafarers. The Prime Minister thanked Iran for its regular high-level participation in the BRICS-related meetings despite the challenging circumstances. The Prime Minister also held a bilateral meeting with UN Secretary-General Antonio Guterres.

दोस्तों समय हो गया है 4:11 और अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग सुप्रभात।

हुआ साहिर लुधियानवी का गीत था रवि का संकेत। अगला गीत आप सुनेंगे जंजीर फिल्म से मन्ना डे का गाया हुआ। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

तेरे मेरे मिलन की ये रहना। अभिमान फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था और आर डी बर्मन के बनाए हुए धुन थे। अगला गीत आप सुनेंगे दुल्हन वही जो पियावन भाए, ये सुदास बनाश्री सेन गुप्ता और हेमलता का गाया हुआ गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा।

प्यार की दो चार दिन। सही बात है दोस्तों, भले ही जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी और खुशियों भरी होनी चाहिए। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने ये गीत सुना सच्चाई फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे संघर्ष फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ। शकील बदायूं की रचना है और नौशाद का संगीत।

जीवन पाऊं, सो आकर तुम में मिल जाऊं। सागर बोला, नदिया बोलो कब तक ये कर पाओगे, मेरे खारेपन को आखिर कब तक गले लगाओगे। नदिया बोली, मैं मीठी हूँ, मीठा जल ही लाऊंगे, जब तक तुम मीठे ना होते तब तक फिर आऊंगे। और हम भी ऐसे ही अपने स्वभाव को बनाए और सामने वाले के स्वभाव को भी बदलने की कोशिश करें।

मुकेश की आवाज में आपने ये गीत सुना अनोखी रात फिल्म से। इंदिवर की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे शक्ति फिल्म से, महेंद्र कपूर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है और आरडी बर्मन का संगीत।

दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि आपकी भी सारी तमन्नाएं, ख्वाहिशें पूरी हो जानी चाहें। और अब मेरा मन कह रहा है कि माँ पर भी आपको एक गीत सुनवाया जाए जो हमारे लिए भगवान का दूसरा रूप होती है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की बेजोड़ रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तकदीर फिल्म से, लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, बच्चों को खिलौनों से ज्यादा अपने माता पिता से प्यार होता है और उन्हें माँ बाप के साथ लगाव भी होता है। और इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9 बजे से 30 मिनट से

रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी विकास विभाग सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। वहीं महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में भारतीय टीम का सामना पिछले चैंपियन श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 101 मेगाहर्ट्ज पर, और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भक्ति रचना से। और कार्यक्रम का नाम आपको मालूम ही है, भोर सुहानी। और अपने दोस्त वंदना चुक्का कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, पद्मिनी कोल्हापुरे और साथियों का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पूर्णिमा फिल्म से, रचना सुमन कल्याणपुर की है और भरत व्यास ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

दोस्तों, जब हम किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो सामने वाले को भी पॉजिटिविटी मिलती है, और किसी का हालचाल पूछ लेने से किसी को ऊर्जा मिलती हो तो आपको उसके लिए ऊर्जा स्रोत जरूर बन जाना चाहिए।

अनाड़ी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मुकेश का गाया हुआ, शैलेंद्र की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तीसरी कसम फिल्म से, ये गीत मुकेश की आवाज में है, हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत।

सच में कई बार बहुत ही हैरानी होती है। जब जब दुनिया को हम देखते हैं तो ऐसे ही मन में ख्याल आते हैं कि दुनिया क्यों बनाई हो गई।